You know what, जब काम अच्छा हो जाता है ना तो पूरी दुनिया क्रेडिट लेने के लिए आ जाती है, लेकिन जब काम खराब हो जाता है ना तो सब अपना पलरार जो है ना उससे झाड़ने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं नहीं, मेरी वजह से तो नहीं है यार, मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं है यार, तुम सोचते क्या हो मेरे बारे में, हाँ समथिंग समथिंग समथिंग। मतलब डूबते हुए जहाज में कोई नहीं बैठना चाहता, यू नो ना। सो हेलो हाय, मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। अब देखो, एक तरफ तो अक्षय कुमार जैसा प्रॉमिसिंग नाम जब मूवीज से जुड़ता है तो लोग बहुत ज्यादा मतलब क्यूरोसिटी से इंतजार करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब मूवीज आती हैं और वो ज्यादा अच्छी नहीं चलती हैं तो वो डिसअपॉइंटमेंट भी देके चले जाती है, राइट। एनीवेज, भूत बंगला मूवी रिसेंटली रिलीज हुई और लोगों को बहुत ज्यादा एंटरटेन करके तो नहीं गई, लेकिन हाँ लोगों ने इसकी वजह से एक इमेज बना ली कि यार भूत बंगला मूवी में कुछ तो गड़बड़ थी यार, कुछ तो गड़बड़ थी। और इसका रीजन पता है क्या निकला, कि इस मूवी में तब्बू ने अच्छी खासी एक्टिंग करी थी, लेकिन जब मूवी एडिटिंग टेबल पर आई तो बहुत सारे उनके शॉट्स जो है ना वो एडिट कर दिए गए। तो कहा गया कि भैया मूवी में तब्बू से काम तो बहुत करवाया गया लेकिन एडिट में उन्हें हटा दिया गया ना, तभी मूवी अच्छी नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, और इस वजह से तब्बू नाराज हो चुकी है। ऐसी बातें बोल बोल के ना लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रोलिंग करी है। सो रिसेंटली इसके जो डायरेक्टर है प्रियदर्शन, उन्होंने भी बोल दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है आप जैसा सोच रहे हैं, तब्बू और हमारे टर्म्स वैसे ही हैं जैसे थे, फिल्म की जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से ही उसकी एडिट हुई है। आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर, मेरी जान आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल।

0: राम ले लो,
1: अल्फांसो
0: बडामी कैसे राम ले लो।
2: क्यों आ गई ना इंडिया के आम की याद? गुड न्यूज, वो टेस्ट अब यही सिंगापुर में। फ्रेश अल्फांसो केसर और बादामी मैंगोज नाउ एट जीजी मार्ट। ऑर्डर नाउ एट जीजी मार्ट ऑनलाइन.com और कॉल 8085656777।

0: ऐसा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: तुमने वो क्या देखा,

ये जो पहला पहला क्रश होता है, ये जो पहला पहला फैन मूवमेंट होता है ना, ऐसे में घबराहट भी होती है और ऐसे में ही सबसे ज्यादा बटरफ्लाईज स्टमक में फील होती है। सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड आमिर खान की कोई तारीफ करे चलता है यार, लेकिन आमिर खान के बेटे जुनायद खान की कोई आमिर के सामने तारीफ करे, ये तो पहली पहली बार का मूवमेंट है यार। सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। देखो इस बार जो है ना, एक बाप ने अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए बड़ी मेहनत करी है एंड एक रोमांटिक ड्रामा मूवी आप कह सकते हैं साई पल्लवी के साथ जुनैद खान की जो इंट्रोड्यूस करी है इन्होंने एक दिन, ये काफी प्रॉमिसिंग तो लग रही है। लेकिन इसकी स्क्रीनिंग के दौरान जो जुनैद खान की एक फैन है वो कोलकाता से ट्रैवल करके बॉम्बे आई थी और उसने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोल दिया कि मैं जुनैद की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने इसके प्लेज, मतलब पहले तो वो थिएटर प्लेज में ही था ना, तो इसके सारे प्लेज देखे हैं इसको, मतलब बहुत ही क्लोजली मैंने इसका परफॉर्मेंस देखा है, सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज़्यादा मैसेज करती हूँ लेकिन ये मेरे रिप्लाई नहीं करते, तो आमिर आप प्लीज हेल्प कीजिए। सो आमिर खान जैसे पिताजी से उनके बेटे की कंप्लेन करने वाला ये जो ऑप्शन है ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। एनीवेज, मैं आज मस्ती मॉर्निंग चोपड़ा आपके साथ है। सो ऐसे ही वायरल से लेकर अपडेटेड बातें आपको पता चलती रहेंगी। डोंट गो एनीवेयर।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। You know what? जब कोई वो होता है ना, मतलब ऐसा वाला सिनेरियो कि तुम्हें यार उल्टा जवाब देना नहीं आता, मुंह तोड़ जवाब देना नहीं आता, ऐसा वाला कोई मोमेंट होता है ना, तो लोग किसको याद करते हैं? कंगना रनौत को, स्वरा भास्कर को, राखी सावंत को, मतलब और भी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं, राइट? सो हेलो, हाय, मैं आरजे अनुपम, मस्ती मॉर्निंग शो आपके साथ। सो इस बार जो है मुंह तोड़ जवाब जिस एक्ट्रेस ने दिया है वो है अपनी स्वरा भास्कर, राइट? स्वरा भास्कर जिनको इस बार सोशल मीडिया पर बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ा, तो इन्होंने साफ साफ सोशल मीडिया ट्रोलर्स को बोल दिया है, आई चोज नॉट टू बाउंस बैक, मुझे अपने पोस्टपार्टम वेट के साथ अच्छा लग रहा है, तो तुम्हें जो करना हो वो करो, मैं जो है ना मैं वो करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि स्वरा भास्कर का जो सिंकिंग आप कह सकते हैं बॉलीवुड करियर है, एंड पॉलिटिकली भी बहुत जगह इन्वॉल्व हो चुकी है, जिसकी वजह से इतना नेगेटिव ट्रोलिंग का ये शिकार बन रही है, राइट? आज अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर, मेरी जान, आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल।
2: किनिया किनिया गल्ला वे तू करदा

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
2: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
1: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई, और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
2: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज, मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

इस बार जो इन्फ्लुएंसर है बहुत सारे सेलिब्रिटीज की फ्रेंड्स की म्यूचुअल लिस्ट में नजर आए हैं वो है ऑरी, राइट? और इस बार वो एक फिल्मी सेट पर ना जो अपना पैकेज्ड वाटर आता है, ऑफ कोर्स यार काफी एक्सपेंसिव आता है, इस पैकेज्ड वाटर के साथ नहाते हुए नजर आए हैं। और एक तरीके से इनडायरेक्टली दिखाया जा रहा था कि यार सेट्स पर सबसे ज्यादा टेंट्रम कौन दिखाता है, तो वो है मिस्टर ऑरी। तो भाई ऐसे टेंट्रम और ऐसी पॉपुलैरिटी, ऐसी ट्रोलिंग और ऐसे व्यूज के लिए काम करना आई डोंट थिंक ये अच्छा तरीका है, राइट? फिलहाल मैं आज चेहरे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके से आपको बताने वाली हूँ, सो डोंट गो एनीवेयर। आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

यू नो व्हाट, ऐसा होता है कि जब आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो होता है ना कंप्लीट इंडियन थाली खाते हो, जिसमें दाल होती है, चावल होता है, अचार होता है, रोटी होती है और छाछ भी होती है और साथ में पतली पतली हरी मिर्च भी होती है। तो आप जब पहली बार वो हरी मिर्च खाते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा तीखा लगता है। लेकिन बाय द टाइम ग्रेजुअली आपको वो स्वाद में मज़ा आने लगता है और फिर तो आप उस पतली सी हरी मिर्च को इतना मिस करते हो कि पहले बोलते हो कि नहीं नहीं हरी मिर्च लाओ तभी मैं खाना शुरू करूँगी या करूँगा। सो ग्रेजुअली आदत लगनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हेलो हाय, मैं आज ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ और मुझे लगता है कि कुछ ऐसी ही आदत बहुत सारे सेलेब्स को लग चुकी है। पता है कैसे? कि उनको ट्रोल किया जाता है और बात बात पे सिर्फ एक ही बात पे ट्रोल किया जाता है और वो पता है कौन सी बात है? मलाइका अरोड़ा के लिए कि वो थोड़ा सा मतलब अच्छे से एजिंग कर रही है, शी इज एजिंग लाइक अ फाइन वाइन, और लोग इन चीज़ों को पॉजिटिवली नेगेटिवली उनको उनके र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ जोड़कर हर तरफ दिखाते आए हैं। तो अब तो मलाइका अरोड़ा ने बोल दिया है कि मुझे तो आदत पड़ चुकी है ऐसी, और अब मुझे कोई कुछ एज से जुड़ा हुआ कमेंट भी करके चला जाता है ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। सो मलाइका तो अपनी लाइफ जी रही है, आप क्यों अपना इंटरनेट बर्बाद कर रहे हैं उनके कमेंट सेक्शन में जाके नेगेटिव ट्रोलिंग करके। हाँ, हर चीज ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वीर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन
2: जोश में रहो।
3: भाई काम करो तो ऐसा करो वरना करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा वाला एग्जांपल सेट कर दिया है। देखो आपने भी अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसे एग्जांपल सेट किए होंगे, है ना, कि काम करो तो अच्छे से करो, अदरवाइज हाथ ही मत लगाओ यार, बदनामी अलग होगी और सैटिस्फैक्शन अलग से नहीं मिलेगा। सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि समटाइम्स जब हम रिसेंटली किसी डायरेक्टर की मेहनत देखते हैं तो हर बार धुरंधर मूवी का नाम आगे निकल कर आ रहा है। राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट धुरंधर मूवी। और इस मूवी में एक गाना जो है ना वो फीमेल और मेल वर्जन में कॉम्बिनेशन में है, जिसका नाम है जाइए सजना। राइट, जाइए सजना जो है ना वो सतेंद्र सरताज, जो कि जाने माने पंजाबी सिंगर हैं, इन्होंने भी बड़ी शिद्दत से गाया है। एंड यू नो व्हाट, ये भी काफ़ी डिफिकल्ट सॉन्ग इसको मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टर आदित्य धर के साथ काम कर रहे थे और उनको इम्प्रेस करना और उनकी फिल्म के अकॉर्डिंग ये आवाज़ ढलना अपने आप में एक लंबा प्रोसेस रहा है। सो जितने भी इस मूवी के आर्टिस्ट रहे हैं उन्होंने इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अपने बॉस की तारीफ तो कर ही दी है, यानी उन्होंने एक भी मौका नहीं छोड़ा टू मेक यू फील दैट कि मूवी को बनाने के पीछे बहुत मेहनत हुई है मेरी जान। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है और बेहतरीन से बेहतरीन गाने मेहनत के साथ डेफिनेटली आप तक पहुंच रहे हैं।

0: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: देखो हर बार घर पर एक केक ले आते हो और उसके बाद मम्मा के हाथ का बढ़िया वाला खाना खा लेते हो और उसी को मदर्स डे घोषित कर देते हो। ये तो गलत बात है यार। मदर्स डे के दिन मॉम को सरप्राइज नहीं दिया तो क्या ही किया। सो हेलो हाय, मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। अब देखिए, माँ के हाथ के खाने का स्वाद जो है वो तो कोई नहीं चुरा सकता, लेकिन हाँ एक अलग स्वाद जो नॉर्थ इंडियन कुजीन का सबसे बेहतरीन आपको मिलता है अक्रॉस द आइलैंड, तो वो है शाही महारानी रेस्टोरेंट में। यहाँ पे डेफिनेटली हर ओकेजन को बेहतरीन बनाने के लिए आपको इन्विटेशन आता ही आता है। सो इस बार मदर्स डे पे क्यों ना आप अपनी मॉम को लेकर यहाँ पे जाएं और यहाँ का बूफे एंजॉय करें, वो चाहे लंच में या डिनर में, एंड बदले में आपकी मॉम को एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। हाँ जी। सो अगर हम मैजेस्टिक मदर्स डे बूफे की बात करें तो लंच में आपको स्ट्रीट फूड के फेवरेट आलू टिक्की चाट से लेकर कीमा पाव से लेकर, अगर आप फिश खाते हैं तो फिश की कैटेगरी से लेकर कबाब से लेकर चिकन की कैटेगरी से लेकर कुल्फी पॉप से लेकर जलेबियों से लेकर क्या कुछ नहीं मिलेगा। सो डेफिनेटली आप पहुंच सकते हैं संडे यानी कि 10th ऑफ मई को 12 PM टू 3 PM मदर्स डे स्पेशल लंच को एंजॉय करने के लिए। $62+ पर एडल्ट, $42 पर चाइल्ड जिनकी एज 7-12 के बीच है। एंड एड्रेस है शाही महारानी रैफल सिटी शॉपिंग सेंटर, 0321B सिंगापुर। एनीवेज आप अगर लंच करना ही चाह रहे हैं तो और भी बहुत सारे ऑफर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, एंड जो डिनर है वो भी आप कर सकते हैं 6:30 PM टू 10:30 PM। एंड डेफिनेटली आपके लिए ये सरप्राइज है कि जो भी हमारी मॉम्स वहाँ पे पहुँच रही हैं उनको एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है शाही महारानी की तरफ से, राइट? लेकिन वो थोड़े से TNC एप्लीकेशन के साथ है, पर टेबल 2 मॉम्स को ही एक गिफ्ट मिलेगा, लेकिन गिफ्ट तो मिलेगा, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो क्विकली रिजर्वेशन करवाइए शाही महारानी.com पर। मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा केजी मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी।
1: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाट टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
1: क्या जी?
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेक आउट करो, और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
1: वाह जी, क्या बात जी।
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: चलो भाई अपने जमाने की बातें याद कर लेते हैं हम। अब आप कहोगे अपने जमाने की बातें, अभी तो हमारी एज ही नहीं हुई है। अरे यार, मैं आज अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि अगर पिछले महीने भी कुछ मेरे साथ हुआ होता है ना, तो भी मैं ऐसे ही बताती हूँ कि सुनो सुनो सुनो, मेरे जमाने में मैंने तो ये कर लिया है, आपने क्या किया है, चलो बताओ। सो द पॉइंट इज कि आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप हर दिन को कैसे जी रहे हैं और क्या इंजॉय करना चाहते हैं। सो आर जे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। एंड रिसेंटली आपको एक याद दिलाना चाहूंगी, शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, राइट? ये सीरियल जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है और इसके जो कैरेक्टर है जेठालाल, वो तो अक्रॉस द ग्लोब जो है ना, वो बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रखते हैं, मतलब अमिताभ बच्चन ऑफ टेलीविजन इंडस्ट्री इन्हें कहा जाता है। सो इन्होंने इस बार बॉलीवुड की कोई तारीफ करी है, बताऊं क्या? दिलीप जोशी जो कि जेठालाल है, उन्होंने बोला है कि जो राकेश बेदी है जिन्होंने पॉलिटिशियन का किरदार धुरंधर मूवी में निभाया है, वो उनके टाइम के बेहतरीन एक्टर रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन काम उन्होंने किया है यार। सो वो कह रहे हैं कि वो अपने टाइम के बेहतरीन धुरंधर रहे हैं, अगर आप आज उन्हें सुपरस्टार कह रहे हैं तो ये गलत है। सो डेफिनेटली यार, ये एक्टर्स ना बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर अचानक से बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, फिर सबको लगता है कि हाँ ये सक्सेस तो उन्हें अभी मिली है यार। चलिए ऑन दिस नोट, मैं आज इन पर आपको डेफिनेटली बोलना चाहेगी कि भाई हर चीज का एक ही मंत्र है, दैट इज मेहनत। आप करते जाइए और आपकी लाइफ में आपको एक दिन सब कुछ अचीव हो जाएगा। मी आर जे नुपुर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: आएंगे
1: न करण अर्जुन आएंगे न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।
2: दस का बीस दस का बीस दस का बीस दस
3: का अरे अरे अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
1: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है
4: टाइम टू रेज द बार
5: रम्मा।
4: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
1: Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
4: Take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musty Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
6: Only on Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: DJ

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: पुरुष ही नहीं महापुरुष है महापुरुष।
0: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: Monday Blues, not on our watch. Wake up to world news, fresh updates aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 a.m. onwards.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out. Josh
5: mein raho. Mere Karan Arjun aayenge.
0: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। Only on Masti Hangout with RJ Mugdha, Radio Masti 24/7 Live.
1: Well, my con headphones in और हमारा connection established. क्या हालचाल सिंगापुर? आप दुनिया के जिस भी कोने से जुड़ रहे हैं मेरे साथ, आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा वेलकम एंड अ वेरी वार्म हेलो। मैं हूँ लाइन सिटी से आपके साथ लाइव। दिस इज मी मुग्धा, मस्ती हैंग आउट पर अपना MHO। वेल, आज का दिन है बुधवार, वेंसडे, डेट मे ऑफ 6। क्या है ना कि हफ्ते के बीच वाला दिन है ये, जिसे लोग क्या कहते हैं, हम डे भी कहते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि वीकेंड अभी दूर है तो आप फिक्र बिल्कुल मत करिए। हम आज ऐसी एनर्जी भरेंगे आपके दिन में कि आप जो आपका बाकी का हफ्ता है ना, ऐसा मक्खन में से गर्म छुरी की तरह निकल जाएगा। कभी निकाली नहीं गर्म छुरी मक्खन में, ट्राई करके देखना, जमे हुए मक्खन में। वैसे शो शुरू करते हैं हमारी, आई मीन मेरी अपनी पर्सनल इंटेलिजेंस कैप्सूल के साथ। मेरी प्यारी सखी है ये, पता है वेंसडे का नाम कहां से आया? एक्चुअली एक जर्मनिक गॉड है वुडन, उनके नाम पे इस दिन का नाम रखा गया था। एंड एस्ट्रोलॉजी में ना ये मर्क्यूरी यानी बुध का दिन है, जो कि कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। मेरा बड़ा प्यारा है और मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज ये कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। तो आज गपशप जो है वो जम के होने वाली है। आइए आज का शो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं कम्युनिकेशन वाली एनर्जी के साथ। मसी हैंगआउट का ये पहला ट्रैक आप सबके लिए, एंजॉय। जोश में रहो,

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577। A future man.

0: साला।
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा केजी मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी।
1: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
1: क्या जी?
2: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
1: वाह जी, क्या बात जी।
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय एवरीवन, वापस आ गई हूँ मैं मस्ती हैंग आउट पर। सो पीपल, सिंगापुर इज नाउ वंस अगेन बिकमिंग द ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड। कैसे? अभी अभी एक खबर आई है कि वर्ल्ड सिटी समिट जो है 2026 का, वो होस्ट कर रहा है सिंगापुर, और ये हमारा सिंगापुर का 10th माइलस्टोन एडिशन होने वाला है। दुनिया भर के बड़े बड़े मेयर्स और एक्सपर्ट्स जो है वो यहाँ पे आएंगे, जमा होंगे, इकट्ठा होंगे, और ये फिक्स करने की हमारी जो कोशिश करेंगे कि हमारे शहरों के को ज्यादा लिवेबल और सस्टेनेबल जो है कैसे बनाया जाए, यानी कि पॉल्यूशन को कम कैसे किया जाए, स्मार्ट टेक्नोलॉजी को ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए। सो फिलहाल यहाँ पे काम आता है मेरा इंटेलिजेंस कैप्सूल। अब आप कहेंगे कि एक बात बताओ मुग्धा, व्हाट्स द लॉजिक? देखो, लॉजिक जो है ना वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस समझिए आप। 2050 तक, अराउंड 2050, दुनिया की 70% पॉपुलेशन शहरों में रह रही होगी, ठीक है? अगर हमने आज से प्लान नहीं किया शहर कैसे सांस लेंगे, तो फ्यूचर में सफोकेशन होने लग जाएगा। इट्स गोना बी वेरी सफोकेटिंग। तो सिंगापुर इज एक्चुअली लीडिंग द वे। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट, राइट? On this note, वापस आइए, उसके बाद में एक और रियलिटी चेक पे बात करेंगे। Stay connected.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: Hey, वापस आ गए हैं आप, मैं हम सब ऑन मस्ती हैंग आउट। अच्छा सच बताइए, फरवरी में ना चाइनीज न्यू ईयर को किसने किसने ब्लाइंडली एंजॉय किया और शॉपिंग करी? Well, नंबर्स झूठ नहीं बोलते, आप भले बगल से निकल जाए। लेटेस्ट जो डेटा है ना वो दिखा रहा है कि सिंगापुर की रिटेल सेल्स ग्रोथ मार्च में थोड़ी स्लो हो गई, 4.8% ही रही, जो फरवरी के कंपैरिजन में काफी कम है। बेसिकली हुआ क्या, हम सब ने फरवरी में इतना खर्चा कर दिया कि मार्च में जो हमारा ये वॉलेट था ना वो चला गया थोड़ा वेकेशन मोड पे, रेस्ट डे में। ये जो डेटा है इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आया, भले ही फिजिकल स्टोर्स में भीड़ कम थी पर ऑनलाइन सेल्स अभी भी टोटल रिटेल का 12% शेयर होल्ड कर रही है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हम खाना और ऑनलाइन शॉपिंग ना कभी भी नहीं छोड़ते हैं, ये तो फैक्ट है। अब चाहे महीना कोई भी उठाकर देख लीजिए, आपने मार्च में सबसे ज्यादा फिजूल चीज क्या खरीदी होगी सोचिए, जरा एक बार जाके अपना चेक करिए, बैलेंस एंड हिस्ट्री आपको पता लग जाएगा।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: वेल ओके हैंड्स अप, किसके किसके घर में मैंगो सीजन का वेट किसी भी फेस्टिवल से ज्यादा होता है? ऑफ कोर्स हर घर में, चाहे कोई भी त्योहार हो, लेकिन ये वाला जो फेस्टिवल आता है ना, इसका हम सब इतना बेसब्री से इंतजार करते हैं जितना शायद किसी फेस्टिवल का भी नहीं करते होंगे। बिकॉज मैंगो सीजन इज इक्वल टू एनी बिग फेस्टिवल, क्योंकि फेस्टिवल्स हर साल आते हैं पर कई बार आम नहीं आते, पर इस बार आम इतने आम नहीं है पर बड़े खास भी हैं। वो क्या है ना, फाइनली समथिंग इज हियर। GG Mart इज ब्रिंगिंग यू द एब्सोल्यूट बेस्ट देवगढ़ के अल्फांसोस और रत्नागिरी के अल्फांसोस स्ट्रेट फ्रॉम द फार्म टू योर डोरस्टेप इन सिंगापुर। अब सुनिए, सो आई हैव गॉट अ वेरी मैसिव डील फॉर यू। आपको ggmartonline.com पे जाना है और एक कोड इस्तेमाल करना है न्यू टेन वाला। ये ना आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट दिलाएगा, इट्स अ मैसिव वन। इसको आप जैसे आप इस्तेमाल करोगे ना, मजे आ जाएंगे आपको। मैं तो कह रही हूँ, मतलब स्टॉक कर लो इस कोड का इस्तेमाल करके। बट इसके अलावा भी एक बहुत ही सीक्रेट वेपन है मेरे पास, आप इनकी वेबसाइट पे रजिस्टर करिए राइट हियर राइट नाउ। अभी एक स्क्रीनशॉट लीजिए अपने रजिस्ट्रेशन का और उसको भेजिए व्हाट्सएप के थ्रू हमारे नंबर पे 9151893 पर। पता है क्या होगा, आपको जादू चिराग में से जिन निकलेगा नहीं एक प्रमोशनल ऑफर कोड आपको यहाँ भी मिलेगा अगर आपने हमको स्क्रीनशॉट भेजा अपने रजिस्ट्रेशन का। देखा, मजे ही मजे हैं, एक तीर से दो शिकार। उधर न्यू टेन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो भी छूट, इधर अगर आप हमें अपना रजिस्ट्रेशन कोड जो है इसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो भी आपको अमेजिंग डिस्काउंट मिलेगा। सो 9151893 इज द नंबर जहाँ पे आप हमारे साथ शेयर करेंगे स्क्रीनशॉट। तो जल्दी करिए, ggmartonline.com इंतजार कर रहा है आपका। आम और क्या कहते हैं उसको, आम के आम और गुठलियों के दाम है ये वेबसाइट, समझ रहे हैं आप? घर बैठे आराम करिए और मजे करिए।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हे हाय, वेलकम टू द बॉलीवुड जंक्शन। जी हां, शो के दूसरे आर में पहुंच चुके हैं और ये हमारा ऑफिशियल बॉलीवुड जंक्शन है ना। फिलहाल मुझे जो दिखाई दे रहा है इंटरनेट पर वो एक ही चीज है और कुछ लोग एक ही जगह पर बहुत ज्यादा चर्चाओं में हैं और ये है मेट गाला। और मैं बात करने वाली हूँ द सेंसेशन करण जौहर की। ये जो डायरेक्टर है ना, अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपीयरेंस के लिए बहुत ज्यादा फिलहाल चर्चाओं में है। 2026 के रेड कार्पेट पे ये पहुंचे और पहुंचते आग लगाई अपने इंस्पिरेशन लुक से, मतलब इंस्पायर्ड लुक से। आपको पता है करण जौहर का लुक किस इंस्पायर्ड था? राजा रवि वर्मा द लेजेंडरी पेंटर। क्लासिक इंडियन रॉयल्टी मीट्स मॉडर्न फैशन मैडनेस, इट वॉज प्योर गोल्ड। सुने सुने, मतलब गोल्ड आइकॉनिक। देखिए क्या है ना, मेरे पास की जो इंटेलिजेंस कैप्सूल है ये हमेशा काम करती रहती है। फिलहाल ये बता रही है कि मेट गाला की आपको पता है एक टिकट की कीमत क्या होती है? लगभग $75,000 होती है, यानी 60 लाख रुपए से भी ज्यादा होती है। और वहां पे अनियंस एंड गार्लिक्स जो है ना बिल्कुल बैन है, ताकि सेलेब्स की जो वो ब्रेथ है वो खराब ना हो, है ना, जब वो सोशलाइज करें। इमेजिन इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी बिना लहसुन प्याज का खाना। आई एम जस्ट किडिंग। अगर आप वो आलिया भट्ट की इमेजेस देख के कंफ्यूज हो रहे हैं तो जस्ट लेट मी टेल यू, वो उधर नहीं गई इस बार, उधर उनको बुलाया ही नहीं तो गई नहीं। शी इज नॉट देयर, दैट्स ए

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ,

0: आंखों आंखों में ही रहना।
1: They are fresh. They are hot.

टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20 पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स, मस्ती टॉप 20 ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: जब सब कुछ इतना ट्रेंडी हो रहा है, सो हाउ कैन वी जस्ट मिस दिस वन। वापस आ चुके हैं आप मस्ती हैंग आउट पर, माय डियर फ्रेंड्स। आपको पता है 10th ऑफ मई को क्या है? Yes, you're right, Mother's Day. And honestly, she deserves to be treated like a queen. वैसे तो हर रोज, पर चलो फिलहाल ये अरेंजमेंट एक दिन के लिए है, सो वाई नॉट। यू नो वॉट, रैफल सिटी में ना शाही महारानी जो है हमारा प्यारा अपना, उन्होंने एक बहुत ही ग्रैंड मेजेस्टिक मदर्स डे बुफे ऑर्गेनाइज किया है फॉर लंच। तो यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो तो है ही हमारी मदर्स की दाल। एक्चुअली इट्स नॉट माँ की दाल, इट्स माह की दाल, बट देन दैट्स दाल अलॉन्ग विद स्मोकी तंदूरी फिश टिक्का, फ्रेशली प्रिपेयर जलेबीज, एंड इट्स अ रॉयल फीस्ट। वेज, नॉन वेज, एवरीथिंग आपको सब मिलेगा। मैं गला की तरह नहीं है कि बिना लहसुन प्याज का खाना खाने को मिलेगा, सब मिलेगा आपको उधर। एंड यू नो व्हाट्स द स्वीटेस्ट पार्ट, हर मदर को एक हार्ट फिल्ड गिफ्ट मिलेगा, बट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ये गिफ्ट्स लिमिटेड हैं टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 जार्स पर टेबल, सो ध्यान रखिएगा, एवरीवेयर टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाई। तो प्लीज हाँ, अपना मजा और दूसरों का भी मजा किरकिरा मत करना। आपको एक जार ऑफ होममेड गुलाब जामुन या फिर सेवरी नमक पारा मिलेगा, प्लस अ फोटो कार्ड। एंड एज आई मेंशन्ड, एवरीथिंग इज विद अ टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। पर जाइए शाही महारानी का जो ये बहुत ही स्पेशल आपके लिए एक अरेंजमेंट है, उसको एंजॉय करिए। यू हैव अ बुफे टू एंजॉय एंड प्लेटर की तरफ मस्ती सजा के शाही महारानी आपके लिए परोस रहे हैं एज ऑलवेज। बिकॉज मुझे लगता है कि सिंगापुर में हमारे हर सेलिब्रेशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है शाही महारानी, दैट एक्चुअली ट्रीट्स लाइक यू अ महारानी, शाही अंदाज, महाराजा एंड महारानी। वेल, ऑल द मदर्स एंजॉय।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: इंटरनेट पर एक किंग साइज खबर लीक हो गई है। बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक जोड़ी किंग खान और हमारी मस्तानी दीपिका पादुकोण एक बार फिर स्क्रीन पर आग लगाने के लिए तैयार हैं। मूवी किंग का सेट एक रोमांटिक ट्रैक शूट कर रहा था, लेकिन वहां से इनकी क्लिप्स फिर से लीक हो गई। पर एक बात सच्ची बताऊं, हाय, इट्स प्योर मैजिक टू वॉच। पता नहीं जानबूझ के लीक करवाई गई है या लीक हुई है, मालूम नहीं, पर इनकी केमिस्ट्री बिल्कुल मसाला चाय और अमेजिंग बिस्किट की तरह परफेक्ट है, फॉरएवर क्लासिक। चाहे वो ओम शांति ओम की बात कर लो, पठान की बात कर लो, जब दोनों साथ में आते हैं ना एक फ्रेम में, अलग ही बिजली होती है भाई। सो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जो गाना है इट्स गोना बी वेरी सोलफुल, एक बैले है एंड एग्जॉटिक इंटरनेशनल लोकेशन पे शूट हो रहा है, वो तुमको पता लग ही गया है। तो ये जितनी भी रोमांटिक लाइंस आप एसआरके वाली चाहो तो ले लो, बाहें फैला के वो दीपिका पादुकोण के साथ जब डांस करेंगे ना, आप किसी को साइड में रखना, क्योंकि आप तो मुंह खोल के बैठ जाओगे, किसी को बंद करना पड़ेगा वरना मक्खी घुस जाएगी। हालांकि डायरेक्टर साहब ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस अप्लाई किए थे जब पहली फोटो लीक हुई थी, पर लो अभी तो वीडियो लीक हो गया। अरे बड़ा मुश्किल है भाई, खुले में शूट कर रहे हो, कोई भी वीडियो बना के लीक कर देगा। मंजाली का सेट थोड़ी है, ओपन लोकेशन है, किसको किसको रोकोगे, है ना।

0: Some shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
1: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा kg मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी,
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
2: क्या जी?
3: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
2: वाजी, क्या बात जी।
3: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कोई बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: Hey, hi, welcome back. This is me, Mugdha, और आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट पर। So, हॉलीवुड जंक्शन में फिलहाल हम एंट्री ले रहे हैं। वैसे तो हम हॉलीवुड बॉलीवुड में हॉप ऑन करते ही रहते हैं। So, हॉलीवुड से एक ऐसी न्यूज आ रही है जिसने सिनेमा और फैशन दोनों ही वर्ल्ड को हिला के रखा हुआ है। यू नो क्रिस्टोफर नोलान, द जीनियस बिहाइंड इंसेप्शन एंड ओपनहाइमर, ऑफिशियली उन्होंने शेयर किए हैं अपने थॉट्स ऑन द डेविल वेयर्स प्रादा 2। Yes, you heard that right. Nolan ने Annie Hathaway और Emily Blunt की जो performances हैं उनको क्या कहा है? Terrific! उनका मानना ये है कि sequel fashion drama का जो genre है उसको एक नए level पर लेकर गया है, in fact ले जाएगा। मेरा जो intelligence capsule है वो कहता है कि Annie Hathaway और Nolan का जो connection है बहुत पुराना है। पता है ना आपको? She was his Catwoman in A Dark Knight Rises. Yes, वहीं से तो इनको जानती तो खैर इंटर्नशिप से ही थी, पर इन दोनों का वहां पे इनकी मुलाकात हुई। सो नोलान के मुताबिक एनी एक फियरलेस एक्टर है एंड एमिली के साथ जो उनकी स्क्रीन राइवलरी है वो एपिक होने वाली है। जब नोलान जैसे कोई परफेक्शनिस्ट डायरेक्टर किसी फैशन मूवी की तारीफ करते हैं तो समझ जाइए कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस होने वाला है। मिरांडा वापस आ रही है और इस बार क्रिस्टोफर नोलान की अप्रूवल की स्टैम्प्ड क्वालिटी के साथ। तुम मेरे ना हुए ना सही। आपने देखी कि नहीं अभी तक?

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है। रफ्ता रफ्ता देखो, आंख मेरी लड़ी है।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: Hey everybody, welcome back. क्या आपने कभी रेनबो को पिघलते हुए बादलों में देखा है? अब आप कहेंगे मुग्धा तुम प्लीज अपनी पोएटिक दुनिया से बाहर आ जाओ। हेलो, जस्ट अ सेक, मैं किसी पोएटिक दुनिया पे नहीं हूँ। इंडोनेशिया में तो मैंने पिघलता हुआ रेनबो देखा है। इंटरनेट पर इंडोनेशिया से कुछ ऐसी पिक्स आई हैं, फोटोग्राफ्स आई हैं, जो ये सबको दिखा रही हैं, इनफैक्ट स्टन कर रही हैं। वहां के रेजिडेंट्स ने ना आसमान में एक ऐसी चीज देखी जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद ये ग्लिच इन द मैट्रिक्स कहें तो गलत नहीं होगा, या फिर किसी कवि की कल्पना को सीधा आप आसमान में देख रहे हैं, पिघलता हुआ इंद्रधनुष। ओह माय गॉड, एक ऐसी चीज, दैट वाज अमेजिंग। ऐसा लग रहा था किसी आर्टिस्ट ने आसमान पे नियॉन कलर्स को ऐसे गिरा दिया हो। इसको कहते हैं रेनबो क्लाउड्स, टेक्निकली क्लाउड इरिडेसेंस। ये इतना ब्रेथ टेकिंग था कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए सिर्फ इस व्यू को देखने के लिए। आना भी चाहिए, इट्स लाइक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, हमेशा नहीं दिखता ये। पर मेरा दिमाग जो कैप्सूल है, कैप्सूल में से इन्फॉर्मेशन आई कि ये मैजिक होता कैसे है। जब सूरज की रोशनी बिल्कुल सही एंगल पर बादल के टाइनी आइस क्रिस्टल्स या वाटर ड्रॉपलेट से टकराती है तो लाइट जो है वो डिफ्रैक्ट हो जाती है, बिल्कुल एक प्रिज्म की तरह से। एंड रिजल्ट एक ऐसा बादल जो इरिडिसेंट रेनबो की तरह चमकता है, तो आपको वो पिघला हुआ इंद्रधनुष लगता है। सो बेसिकली बादल इंद्रधनुष बन जाता है। पता है इंडोनेशिया के मैथोलॉजी में ऐसी चीजों को अक्सर डिवाइन मैसेजेस कहते हैं। मैं तो बस ये कहूंगी, हमारी अर्थ हमें ना हर दिन रिमाइंड कराती है और करती है कि मैजिक इज रियल। अगर आपने ये पिक्स जो है वो नहीं देखी है तो गूगल करो, अभी मिल जाएगी।

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती बॉयज, आपकी चॉइस।
1: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

0: कोई बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: AI और रोबोट्स के जमाने में हमें लगता है कि मशीन कभी गलती नहीं कर सकती। लगता क्या है, लोग तो मान के बैठे हैं कि मशीन्स आर ऑलवेज राइट, लेकिन चाइना के एक्सपोर्ट्स डे के इवेंट में कुछ हुआ जो देख करके अगर आपने देखा तो आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। स्टेज पर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो डांस लीड कर रहा था, बिल्कुल एक ह्यूमन लाइक प्रिसिजन के साथ वो डांस कर रहा था। ऑडियंस तंग थी, कैमरा फ्लैशेज ऑन थे, अचानक यहाँ भी ग्लिच हो गया, ग्लिच इन द मैट्रिक्स ऑफ रोबोट हेड। जी, रोबोट अपने स्टेप भूल गया और वो इतनी तेजी से गोल गोल घूमर करने लग गया कि मैं क्या बताऊं, घूमर। ऐसा लगा था जैसे 10 कप एक्सप्रेसो पी के आया हो वो। जूम जूम जूम जूम जूम जूम। वेल, देयर वाज अ लॉजिक। एक्चुअली क्या हुआ, इस इंसिडेंट ने ना पूरे इंटरनेट को ब्रेथ टेकिंगली कंफ्यूजन में डाला हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्रेक डांस मूव दिखा रहा था वो बीच में, कुछ कह रहे हैं कि बेचारे रोबोट की गलती नहीं है भाई, ऐसा हो जाता है। वेल, देखो क्या है ना, मुझे लगता है कि वो फ्राइडे मोड पे चला गया था। एक्चुअली रोबोट ना हम सबका स्पिरिट एनिमल है, जस्ट ट्राइंग टू कीप अप विद इट लाइफ्स रिदम। बट क्या होता है, वांटिंग टू स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल, क्रैश हो जाएंगे। इंटरनेट पर लोग इसको द मंडे मोड कह रहे हैं। एंड व्हाट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी, मुग्धा क्या कह रही है, डोंट बी अ मैल फंक्शनिंग रोबोट। ब्रेक लो और रिलैक्स करो, समझे, स्टे स्मार्ट बट स्टे ह्यूमन।
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: पता है, मिरेकल्स हैपन इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वेज। चाइना से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो आपका दिल पिघला देगी। एक ब्राइड टू बी जो महीनों से कोमा में थी, अचानक अपनी शादी से महज कुछ दिन पहले होश में आ गई। वाओ! और ये सब हुआ एक कोल्ड ट्रीटमेंट के गलत हो जाने की वजह से। जी, कोल्ड का इलाज कराना था, इलाज को ही कोल्ड हो गया, समझे? उस इलाज ने उसको कोमा में भेज दिया। उनके जो उनके फियांसे थे, उन्होंने एक दिन भी उनका साथ नहीं छोड़ा था। बेस्ट पार्ट वाज दिस, एक्चुअली हमने फिल्मों में देखा पर ही रियल लाइफ में हुआ। हर दिन उनके पास बैठते और उनको मोटिवेट करते। अब उन्हें किस बात ने मोटिवेट किया? आई थिंक प्यार ने, है ना? पता है, मेडिकल साइंस कहता है कि कोमा में भी हमारा जो दिमाग है ना, वो साउंड और इमोशन ट्रिगर्स को ना प्रोसेस कर सकता है। कुछ कहा था क्या फियांसे ने? अब ये जो ब्राइड है, उसके होश में आने का सिर्फ एक मेडिकल, उसको आप कोइंसिडेंस नहीं मान सकते हैं, बल्कि आप उसको विल पावर भी कहिए, ह्यूमन कनेक्शन कहिए, इन सब की जीत है ये। इमेजिन आप करिए ना वो मोमेंट जब उन्होंने पहली बार अपनी आंखें खोली होंगी और अपने ग्रूम को सामने देखा होगा। वाओ! सपने में भी नहीं सोचा होगा। कोमा में सपने देखते हैं क्या? पता नहीं। तो जब कोमा में नहीं थी उस वक्त सपना कभी देखा हो? एनीवे, ये कहानी जो है इसने प्रूव किया, पहली बात तो उनको मिला द मोस्ट ब्यूटीफुल वेडिंग गिफ्ट, है ना? एंड इस कहानी ने प्रूव किया कि इश्क में लोग वापस जिंदगी भी पा सकते हैं। इट्स ट्रूली हार्ट वार्मिंग। वाह मुग्धा, मैं शायरा बन गई हूँ।
2: फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल।
1: Stay tuned.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: Hands over this. आज का शो होता है यहीं पर खत्म। The 3-hour journey comes to an end. Curtains गिराने का वक्त आ चुका है, बस वो आपको दिखाई नहीं देंगे। आज का मस्ती hangout was amazing, right? वाकई में। Wednesday को लेकर हमने इतनी बातें करी कि क्या ही बताऊं मैं आपको। बेचारा रोबोट, the amazing clouds, Bollywood का Met Gala पे कदम रखना, and then many more things. पर फिलहाल एक ही बात है कि वक्त है आपसे इजाजत लेने का। अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइलिंग, और हमेशा याद रखिए, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, जैसे कि मैं कहती हूँ। दिस इज मुग्धा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द लायन सिटी। टाटा, बाय बाय, सी या, एंड स्टे फैब्यूलस एंड स्टे कनेक्टेड।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: पूरे 100 रात के बज गए 1:45 जो होता है होने दो।
1: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।
2: Every voice begins with a dream, a note that dares to fly. From Singapore to the world, Music Beyond Boundaries Season 4. Watch Music Beyond Boundaries only on Musti AVI, powered by Musti Media Network Singapore. For show timing and more, stay tuned to Radio Musti 24/7 Live. One world, one sound, one love. Music beyond boundaries, beyond borders, beyond time.
3: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें। समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है?
2: तुमको लेकर
1: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
3: मुझे चांद पहले चलो,
1: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
4: रात अकेले है।
5: जोश में रहो।
6: दिल टूट जाए या चार्जर गुम हो जाए, मम्मा सब संभाल लेती है।
7: जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ।
6: This Mother's Day, give her the royal treatment she truly deserves with a majestic Mother's Day celebration, Shahi Maharani. Choose from a lavish lunch buffet or a special a la carte dinner experience on Sunday, 10th May. From tandoori delights to maki dal to kulfi pops and jalebis. All this at just $62 plus plus per adult and $42 plus plus per child. Plus, every mom receives a complimentary jar of gulab jamun or namak pa and a special photo card to capture the memory. Mother's Day Shahi Lunch and Dinner at Shahi Maharani, Raffles City. Limited seats, book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions applied.
8: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
3: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7। नाचने का मन है मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
4: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: पुरुष ही नहीं महापुरुष है महापुरुष।
0: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: Monday Blues, not on our watch. Wake up to world news, fresh updates, aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 a.m. onwards.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network, Singapore.
4: Check it out. Josh
5: mein mere Karan Arjun aayenge.
0: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: आना चाहिए।
1: आप बोलो हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
0: ऑल इज वेल।
1: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉइस, आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Check it out.
4: Your Musti Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.
5: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Masti 24/7. Masti Pe Bhakti, subah 6 baje se.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musty Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
3: Only on Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
4: Check it out.
5: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
6: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में
7: रहो। मेरे करण अर्जुन आएंगे?
8: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।
2: Your Musti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.

0: मेरा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज।

0: रेडियो मस्ती 24/7 आओ मूड चेंज करें।
1: आओ मूड चेंज करें। बिल्कुल ऑफ कोर्स चेंज करने के लिए तो आए हैं हम। देखो जॉक भी चेंज हो गया ना। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अल्ट्रा आपके आपके साथ बिल्कुल जुड़ चुकी है। गुड इवनिंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। 5:00 हो चुके हैं यहाँ पर 6 मिनट एंड यस मी द प्रिटी वुमन इज हियर एंड ऑल द प्रिटी वुमन यस धीरे धीरे करके यहाँ पर बिल्कुल जुड़ती हुई जा रही है जैसे कि सपना आंटी। सब आ गए एंड सलमा हमारी वो कह रही है कि चलो अब तो मतलब अंतरा आ गई है तो मूड तो चेंज होना ही होना है। आई थिंक इट इज नॉट जस्ट मी, इट इज ऑल ऑफ अस टुगेदर। द मोमेंट वी ऑल गेट टुगेदर हम सब एक दूसरे का मूड जो है वो बदलने लग जाता है। और वैसे भी वेंसडे जो है काफी कोजी कोजी you know, जैसे कि होता है। But some days, like some Wednesdays, don't they feel like Mondays? कभी कभी ऐसा मुझे feel होने लगता है कि भाई क्या चल रहा है, हमें करना है मूड चेंज करना है, लेकिन ये मंडे वाला chaos जो है वो वेंसडे को क्यों ऐसा होता हुआ जा रहा है। Some days are so heavy, right? And then you at the end of the day ऐसा लगता है जब आप घर पहुंचते हो, and this is the reason I think घर इसीलिए बना होता है, that is the most comfortable place. The moment you step inside आपको लगता है कि भाई घर के कपड़ों में चेंज हो, and you either you hit your sofa or you hit your bed. Just one of those comfortable position you get into, but then I think that's life, है ना? और जिंदगी का नाम है आगे बढ़ते जाना, चाहे कितनी भी heaviness और कितना भी कुछ होता रहे, we all just have to keep moving forward day after day, night after night. I know. कहीं हुआ है ना dear मस्ती दिल से, वो एकदम wisdom भरा हुआ रहता है। वैसे तो मेरे पास wisdom है बहुत, it's just that भाई बहुत सारा कुछ है बताने को। मेट गाला ने जो मतलब इंस्टाग्राम हैक कर रखा है, मुझे ऐसा लगता है हर जगह पर जो है अलग अलग तरीके के सिर्फ ड्रेसेस वगैरह ही नजर आ रहे हैं, बट देर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन विच आई हैव यू नो गैदर्ड ऑल्सो, सो आई शैल शेयर ऑल ऑफ दैट विथ यू। फिलहाल के लिए ये लड़की कह रही है कि चलते हैं और गाने वाले भी साथ साथ में सुनते रहते हैं। लेट्स हैव अ रियली रियली गुड टाइम एंड अ गुड इवनिंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
2: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
1: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
2: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
3: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
4: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
5: Take a break, laugh a little, and vibe a lot, because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
6: 5 बजकर हो चुके हैं 17 मिनट। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मिडवीक ब्लूज आप सुन रहे हैं। मैं हूं आत्रा आपके साथ एंड एकदम झकास मूड में, क्योंकि जब शो शुरू होता है मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस फ्री टाइम मेरा ये शो के चलते हुए ही रहता है, क्योंकि मैं इसमें इस टाइम पर मस्ती के अलावा और कुछ नहीं कर रही होती हूँ। जस्ट प्योर प्योर फन टॉकिंग टू यू ऑल, दैट इज how much special you are, you all are to me. So well, mera achha mood, to matlab main koshish karungi ki aapka bhi hamesha achha hi mood ho. Coming to bhai, Alia Bhatt bhi now is in a good mood. Why? Because she has bagged another role, guys. yeah. So main soch hi rahi thi kuch time pehle, aaj se 2 hafte pehle maine Razi dobara se dekhi, and I tell you, matlab this is Razi is one of those Alia Bhatt movies where she like has surpassed, भाई रेस्पेक्ट आती है दिल से इस बंदी के लिए। उस मूवी में उसका जो कैरेक्टर उसने प्ले किया है और इतनी कमाल की एक्टिंग की है ना, इट इज जस्ट टू गुड। सो I like Alia Bhatt. I know that she can really really act well. जब तक वो शिवा नहीं करती है, somehow I know, like of course रणवीर के साथ कर रही थी and it was the script की demand. See, there are a lot of times when you know you cannot blame the actor also, na, all the time. So well, Alia Bhatt जो है, if reports are to be believed, she has bagged the role in Tumbad 2. Yes, Nawazuddin Siddiqui के साथ अब आलिया भट्ट का नाम भी जुड़ चुका है, and it's not just a cameo, but a काफी significant part है इनका। इनका role जो है is expected to become a full-on lead in the part 3, यानी कि तुम्बाड़ का part 3 भी आने वाला है, जबकि मैंने पहली तो बिल्कुल भी नहीं देखी हुई है। But well, so she has allotted kind of 20 days इस shoot के लिए, अपने portion के लिए in Tumbad 2, and उम्मीद किया जा रहा है, and she is also expecting a lot, क्योंकि धीरे धीरे I think इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है ना वो काफी ग्लोबली राइज कर रहे हैं, एंड वक्त के साथ आपको वाटर बन जाना चाहिए कि गो विद द फ्लो माय डियर फ्रेंड्स, है ना। वैसे मेरा फ्लो तो काफी थोड़ा थोड़ा 90s वाला हो जाता है, क्योंकि कल वाले होता ही है, कल आने से पहले मेरे अंदर एकदम ऐसी आत्मा आ जाती है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा फीलर आधे रहना चाहिए, है ना सलमा। बिल्कुल मैंने सही कहा ना। तो इसी बात पे अगला गाना, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: पवन।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: शाउट आउट टू दोस पीपल जो मुझे कैसी हो बोलकर भाग जाते हैं फिर कोई जवाब नहीं देते। रेडियो वर्सी 24/7 लाइव 5:33 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। चलिए आपको बताया जाए कि क्या है ट्रैफिक का हाल चाल। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन टीपी टुवर्ड्स पीआईई आफ्टर पासरस ड्राइव 12। हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा ऑन पीआईई टुवर्ड्स चांगी एटा पसर रंगून रोड एग्जिट और मिलेगा व्हीकल ब्रेकडाउन ऑन बीकेई टुवर्ड्स वुडलैंड्स एट आफ्टर KJEPIE। हाँ जी हाँ जी, इसी के साथ हमारी मिस अतवारो भी यहाँ पर ट्यून इन कर चुकी है एंड मैंने कहा आ गई, बिल्कुल ऐसे इसी टोन में मैंने उनको भेजा है मैसेज एंड या अंजी से आई पुट ऑन बट आई वेंट टू क्लीन द किचन। ओके ओके, सब अपना बता दो मुझे कौन क्या कर रहा है, ठीक है। हेलो बोल के कोई भागेगा नहीं। रेडियो 24/7 लाइव पर फिलहाल मैं ऐसा गाना सुनाऊंगी कि आप भागे नहीं पाओगे, है ना, एकदम ऐसा वाला। अब बोलो कि अंतरा ये कौन सा इमोशन होता है, गाना सुनो खुद ही समझ में आ जाएगा।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज
1: भाई, यहाँ पे लोगों ने कहा था आओ मूड चेंज करें. मैंने कहा कि ठीक है, ऐसा गाना लगाते हैं कि मूड सही में एकदम बदल जाए. मतलब ऐसा वाला भी हो सकता है और वैसा वाला भी हो सकता है. जिस तरह से आप चाहते हो वैसा वाला हो सकता है. आई नो इट इज नॉट फ्राइडे, बट देन अभी से शुरू करेंगे तभी तो फ्राइडे तक जाकर जो है. No, okay. Let me come back, Antara, come back. Radio Masti 24/7 live. 5:39 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में. मैं ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके साथ एंड मतलब मैं अभी दिन में रेनबो ही रेनबो देख रही हूँ ऐसी बातें करने के बाद. बट वेल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेनबो. आई एम टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ रेनबो ये जो है नजर आया है इंडोनेशिया में. आपने उसकी फोटो देखी? इट लुक्स एआई जनरेटेड, बट दैट्स लाइक नेचर का खुद का नेचुरली एआई जनरेटेड. इट लुक्ड अमेजिंग भाई. द साइट वाज कैप्चर्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ जोंगोल वेस्ट जावा में. एंड द ट्रैफिक जो है वो काफी ब्रीफली डिस्टर्ब भी हुआ, जहां पे मोटरिस्ट जो है दे पुल्ड ओवर टू टेक फोटोज एंड वीडियोज ऑफ दिस. ये हाल ही में हुआ इंडोनेशिया में, और वहां की वेदर एजेंसी जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया दैट द रेनबो लाइक कलर्स वर कॉज्ड बाय द सनलाइट इंटरैक्टिंग विद वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर फ्रॉम बोथ फ्रॉम रेसिडुअल जो रेन है एंड रेनफॉल जो की हो रही है ऑन द अदर साइड ऑफ द सेंट्रल एरिया. दिस फिनोमिनन जो है कहा जा रहा है इज नोन एज क्लाउड इरिडिसेंस. टिपिकली अपीयर्स अराउंड फ्लफी क्यूमुलस क्लाउड्स गिविंग देम ब्यूटिफुली स्ट्राइकिंग आउटलाइन. भाई मेरे को अचानक से ज्योग्राफी बुक खुल गई जो है स्कूल की. मुझे ऐसा फील आने लगा कि नाउ दिस प्रोसेस दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड लाइक दिस. भाई रेनबो जैसा है, थोड़ा सा एयर जनरेटेड फिल्म लग रही है, बट दिखने में अमेजिंग. आई लव कलर्स एंड दे हैव ऑल द कलर्स आई लव ओवर देयर. आई थिंक सबसे कमाल की क्या जो आर्टिस्ट है ना वो हमारा नेचर है. क्या खूबसूरती से वो हर सीजन के साथ हर एक छोटी बात के साथ कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है. इट हैज बोथ साइड्स टू इट, बट देन दिस इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल वेरी वेरी प्रिटी साइड्स ऑफ इट. वेरी मस्ती 24/7 लाइव पर फिलहाल के लिए बढ़ते हैं आगे. यहाँ पर मूड तो चेंज हो गया है ना. अब थोड़ा सा ढिकचिक करते हैं, थोड़ा सा वैसे बीट बढ़ाते हैं, क्या कहते हो? स्टे ट्यून्ड. Tum tagina dikhe sa sa sa. Tum tagina dikhe sa sa sa.

0: दिल टूट जाए या चार्जर गुम हो जाए, मम्मा सब संभाल लेती है।
1: जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ।
0: This Mother's Day, give her the royal treatment she truly deserves with a majestic Mother's Day celebration, Shahi Maharani. Choose from a lavish lunch buffet or a special a la carte dinner experience on Sunday, 10th May. From tandoori delights to maki dal to kulfi pops and jalebis. All this at just $62 plus plus per adult and $42 plus plus per child. Plus, every mom receives a complimentary jar of gulab jamun or namak pare and a special photo card to capture the memory. Mother's Day Shahi lunch and dinner at Shahi Maharani Raffles City. Limited seats. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions applied.
2: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20.
3: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा?
0: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है. To raise the bar. Ramma. Musti Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week. Full on Renuka style.
4: Renuka.
0: Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
5: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Our mood change kare.
0: Welcome back, Radio Masti 24/7 live on Travge Saad, and so much so goes in this Met Gala. Oh my God, आपने सुबह सुबह जो है हमारे फोटो तो देखी ही होगी ईशा अंबानी की. देखी नहीं देखी भाई साहब. ओ माय गॉड, एक तो उनकी मम्मी की ज्वेलरी मतलब ए टू जी भाई, ब्लाउज ही बना दिया उस पूरी पूरी. इट वाज ब्यूटीफुल. सी यू हैव टू गिव इट, द साड़ी वाज ब्यूटीफुल, द एवरी द गजरा एंड द भाई आम पहुंच गया है आपके मेट गाला में. और अभी तक जीजी मार्ट ऑनलाइन से आपके घर तक मतलब ऑर्डर नहीं करोगे तो कैसे पहुंचेगा? आप देख रहे हो आम इज जस्ट गोइंग प्लेसेस एंड द नेक्स्ट प्लेस इज योर हाउस, है ना? जीजी मार्ट ऑनलाइन से इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल आम आपको ऑर्डर कर लेने चाहिए. अल्फांसो वाले, देवनागरी या फिर रत्नागरी, जो भी है, जो भी आपको पसंद हो. Every single, I think because they're organic and they're so delicious and juicy and chemical free, they mix. It makes sense. Just order them and relish them just like I do every single time. So, well, ggmartonline.com and new 10 code. Yeah, 10% off bhi milega if you use this code. Kitne lucky ho aap sabhi jo hai, jo tuned in hai is time par, that you can get this code. And if when you are there and you can register and you can use this code and get those mangoes in your house as well. And other than that as well, they have all the groceries you need. So, you can order other things as well. So, मैं बताने वाली थी मेट गाला के बारे में, बट देन कोई बात नहीं, बात ये हो गई क्योंकि मुझे वो आम याद आ गया. देयर इज दिस पाउच में एक आम जो है, एंड दैट इज नॉट अ रियल आम बाय द वे, जो ईशा अंबानी कैरीड ऑल द वे ऑन दैट मेट गाला का रेड कार्पेट. इट्स एक्चुअली अ स्कल्पचर जो कि 20 साल पुराना है. बिकॉज फैशन इज आर्ट का थीम था, तो एवरी थिंग एंड एवरी बडी वॉज काइंड ऑफ डूइंग एंड गेटिंग इंस्पायर्ड doing and related something on that. But did you know that Met Gala in itself has some rules which nobody can break, like no one can break. Aur agar wo break ho jata hai to aap agli baar invite hi nahi hote. Yeah, what are those? Let me come back and tell you about that. But right now I think it's the perfect moment where we can jo hai take a musical break, wrap up this hour, and milte hain agle ghante mein.

0: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज़ ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
1: वेलकम है 6 बजे के उस पार रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराप के साथ यहाँ पर बिल्कुल जुड़ी हुई है 5 बजे से, इनफैक्ट जुड़ी हुई है. इसीलिए सजन रेडियो जो है जरा बजाइयो बजाइयो जरा. वेल भाई, जाने से पहले पिछले घंटे को रैप अप करते हुए मैं मेट गाला के बारे में बात कर रही थी एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट मेट गाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड व्हाई नॉट. बाय गॉड की कसम, मुझे इस बार सच्ची में लगा दैट ऑल द डिजाइनर्स हैव वर्कड रियली रियली हार्ड ऑन द थीम, या फिर इट इज समथिंग लाइक कि अब मुझे धीरे धीरे मेट गाला और इनका कॉन्सेप्ट और ये सारी चीजें जो है ना समझ में आने लगी है. बट देर आर रूल्स माई डियर फ्रेंड्स, जो कि 10 स्ट्रिक्ट मेट गाला रूल्स है. कोई भी सेलिब्रिटी अपेरेंटली इन रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकता है. सबसे पहले तो नो फोन्स, इसका मतलब नो प्रूफ. सो 2015 से फोन्स आर टेक्निकली बैंड इनसाइड द मेट. सो कोई सेल्फीज नहीं, कोई पोस्टिंग

प्राइवेसी जो है वो रहती है टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि बाकी सब तो खींच के डाल ही रहे हैं। और अभी सोशल मीडिया पे हर जगह पे इनकी फोटो है, इनको खुद का फोन ले जाने की जरूरत है ही क्या? लाइक मेक्स नो सेंस एट ऑल। 18 प्लस ओनली, दैट्स द सेकंड रूल। सिंस 2018 गेस्ट जो है वो कहा गया है 18 प्लस के ही होने चाहिए। 22nd रूल, सो बेसिकली यू गेट ओनली 20 seconds विद दी एना, ओके दी एना एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स, एंड गेस्ट ओनली गेट यू नो जस्ट फ्यू सेकेंड्स टू ग्रीट एना विंटर। हाउ मतलब एकदम टोटल एलीट। देन अगेन अनदर रूल, यू आर नॉट सपोज टू सिट विथ योर पार्टनर। या सीटिंग जो है बहुत ही केयरफुली इंजीनियर की होती है। कपल्स जो है दे आर यूजुअली सेपरेटेड जस्ट टू एनकरेज न्यू कनेक्शंस एंड पावरफुल कॉन्वर्सेशंस। आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक रूल। नो गार्लिक नो अनियन, दैट इज राइट, क्योंकि आपकी सांसें काफी मैटर करती है। स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग इंग्रेडिएंट्स जो है वो एब्सोल्युटली बैंड है मेट में। नो पार्सली एंड नो शाइव्स एज वेल, क्योंकि वो आपके दांत में अटकने का पूरा पूरा काबिलियत रखते हैं। सो इवन हर्ब्स आर काइंड ऑफ कंट्रोल्ड। या Anything can ruin your smile. You cannot ruin anything over there. जब हम मेट गाला की बात करते हो, there should, of course, no smoking rule तो है ही है। You have to be on time. अगर आपको जो slot दिया गया है, वो slot किसी भी celebrity ने miss कर दिया, you miss the carpet का guest list. And you know, लेट अराइवल्स जो है वो अपना मोमेंट तो वो लूज करते ही करते हैं, लेकिन आना छोड़ छोड़ है वो अलग से एक नोट ले लेती है कि शायद अगली बार इनको बुलाया ही नहीं जाए। एंड एनाज अप्रूवल ऑफकोर्स दैट हैज टू बी देयर, दैट स्टैम्प हैज टू बी देयर। एवरी गेस्ट एंड आउटफिट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय एना विंटर। नो अप्रूवल मतलब नो इनवाइट। यू हैव टू follow the theme, जो भी theme हो, you break it and you might not be ever invited again to Met Gala. There are a list of people जो banned है Met Gala से, Donald Trump being one of them. So well, ऐसा भी है, it is उस standard की चीजें होती है। Suddenly she gave me that Devil Wears Prada का vibe. I want to go and watch the part 2 यार, I just love that movie. Radio Vasti 24/7 live पर भाई gala Met Gala Kai chala, very nice. Good effort, good one. But right now we have to run down the city. Coming up next is this Gana Dhurandhar, bro. Radio Masti 24/7 live.

0: so sexy. Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
3: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।

0: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
1: जिस दिन मिलिंद सोमन जो है अलीशा चन्नाई के उस वीडियो में मेड इन इंडिया के उस डब्बे में से डब्बा फाड़ के बाहर निकला था ना, मुझे उसी दिन पता चल गया था कि ये बंदा ही इज ऑलवेज गोना बी देयर, ही विल बी अराउंड. वो जो हमने तब आंखें सेकी, आज तक आंखें सेक ही रहे हैं जबकि इतने साल हो गए भाई, 60 का हो गया बंदा अभी भी. How? It's just OMG. Like seriously, wala. Radio Masti 24/7 live. Antrab ke saath yahan par aur ye yahan pe chal raha hai Midweek Blues. Bhai, Milind Soman ko dekhkar aise hi mood change ho jata hai. But he has recently just proved once again that bhai, agar limitations hoti hai, wo sirf aur sirf hamare dimag ki hoti hai. So at 60, he successfully completed 15 kilometer ka open water swim across Strait of Gibraltar. Across from Europe to Africa in 5 hours. So, of course, see, जब आप समंदर में होते हो ना, you cannot predict anything. कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, unpredictable currents होते हैं. To finishing with his signature push-ups, which he gets done with everybody. किसी को भी फोटो खिंचवानी होती है उनके साथ, वो कहते हैं पहले पुशअप्स करो, इतने करोगे तो ही तो तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाओगे. फिट होना चाहिए तुम्हें मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए, विच लाइक बनता है, टोटली बनता है. एंड ही काइंड ऑफ कंटिन्यूज टू रीडिफाइन ह्यूमन एंड्योरेंस. आई मीन ही एंड यू नो उनका जो पिक्चर भी है राइट, स्विम करते हुए उनका वीडियो है पूरे उसमें, एंड देन ही कम्स आउट एंड ही स्टैंड्स विद इंडियन फ्लैग आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फीट. ही लुक्स स्टनिंग मैन, ही लुक्स अमेजिंग. कैसे भाई, ऐसे बूढ़ा होना है तो ऐसे बूढ़ा होना है. बस उसी चक्कर में तो पहुंच जाते हैं आजकल अब अपना हेल्थ का ध्यान रखने, बस इसी चक्कर में हम जैसे ही थोड़ा सा भटकने लगते हैं, मिलिंद सोमन सामने आ गए. उन्होंने कहा कि बस देखो ऐसे करो. क्यों फॉर ऑल दोज पीपल हु लव फिटनेस एज मच एज दे लव फूड एज वेल, बोथ स्टार्ट्स विद एफ राइट. या विच एफ टू लव मोर और जस्ट एफ. गाना सुनते हैं. मूवी का नाम भी गाने से मेरा कुछ नहीं हो सकता. बर्फी मूवी से कमेगा अपने एक्स्ट्रा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन थ्रॉप के साथ। यहाँ पर जो है ट्रैफिक का अपडेट जब हो चुका है 6:28 बाय द स्टूडियो क्लॉक कुछ ऐसा है। हेवी ट्रैफिक आपको मिलेगा ऑन टीपीई टुवर्ड्स एसएलई बिटवीन पोंगोल रोड एंड टेम्पनीज एवेन्यू 10। हेवी ट्रैफिक आपको मिलेगा ऑन केजेई टुवर्ड्स बीकेई एट चुकागवे एग्जिट और व्हीकल ब्रेक डाउन मिलेगा ऑन एसएलई टुवर्ड्स बीकेई आफ्टर वुडलैंड्स एवेन्यू 2। यहाँ पर मुझे हंसी इसलिए आ रही है बात करते करते बिकॉज आप लोगों के मैसेजेस ही यार कभी कभी इतने फनी होते हैं। तो यहाँ पे जो है सलवा लिख के भेज रही है क्योंकि अभी गाना चल रहा था ना ओ अंतरा मामा नहीं मतलब ओ अंतवा तो कह रही कि मतलब चाहती क्या हो अंतरा तुम। हाँ मस्ती मैडनेस तुमने अभी से शुरू कर दिया है क्या मतलब व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस। कभी भीगे उठते रहे कभी ओ अंतवा मतलब मैं कह रही हूँ कि सारे इमोशंस होने चाहिए। वेंसडे को लेट अस ले डाउन ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस ऑन आवर प्लेलिस्ट। क्या कहती हो है ना जैसे अभी वो अंतवा करते हुए थोड़ा सा अब मैं 90s प्ले कर दूंगी तो फिर से मूड चेंज हो जाएगा। नहीं आया ना स्माइल आई।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: भाई कभी कभी कहते हैं ना, अकल जो होती है ना जरूरी नहीं है. आप कितना भी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर लो, लाइफ की कुछ कुछ बातें ना आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखा के चली जाती है, आपको समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्या है ना, ये हमें पहले क्यों नहीं एहसास हुआ. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ यहाँ पे चल रहा है मिडवीक ब्लूज. अभी मैं कह रही थी ना कि आई रियली रियली वांट टू गो एंड वॉच डेविल वेयर्स प्रादा का जो सेकंड पार्ट निकला है, बिकॉज आई हैव वॉच्ड द फर्स्ट पार्ट एज वेल एंड फॉर सम आई जस्ट काइंड ऑफ लव इट. लाइक भाई जैसे दिल धड़कनों दो के साथ है, राइट, देर आर सो मेनी रिलेटेबल पॉइंट्स एंड डेविल वेयर्स प्रादा जस्ट सिट्स राइट देयर. सो वेल कुछ मैं मेरिल स्ट्रीप का एक इंटरव्यू देख रही थी एंड शी सेड दैट जब डेविल वेयर्स प्रादा 2 का उनके पास ऑफर गया था, डिड यू नो दैट शी सेड नो टू इट? यस, उन्होंने ना कर दिया था एंड एवरीबडी वेंट इन अ शॉक लाइक व्हाट बट व्हाई. सो शी शेयर्ड कि उन्होंने उसके लिए मना इसलिए किया क्योंकि उनको देखना था दैट हाउ मच आई वॉज नीडेड फॉर दिस पर्टिकुलर सेकेंड पार्ट. एंड वो रियलाइज करते करते उनको कहते मैं इतनी आज इतनी उम्र हो गई है मेरी, मैंने इतने सालों में यही रियलाइज नहीं किया कि देर आर थिंग्स विच ओनली आई कैन डू एंड आई वॉज इम्पॉर्टेंट एंड आई वॉज वेरी मच नीडेड टू बी देयर. मैंने ना इसलिए किया सो दैट आई कैन सी वेदर आई वॉज नीडेड सो दैट आई कैन आस्क डबल द अमाउंट ऑफ वॉट आई हैड चार्ज फॉर द पार्ट वन. कितनी सिंपल सी बात लगती है ना, बट देन You look at her age and she is wise, okay? And you know, वो जानी और मानी जाती है, काफी honest, you know, बातें कहती है और सामने टू upfront कहती है. She is known for that and she realizes that after so many years that something like this, I can ask for double the money because yes, I have worked hard for it and yeah, I am required for this part two as well. ऐसे ऐसे बातों को देख के लगता है कि अगर मुझे थोड़ी बहुत अकले जो है अभी साथ साथ में चलते हुए आ ही रही है तो इट्स ओके. लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड वी कीप ऑन लर्निंग टिल द एंड ऑफ इट. नहीं है ना, एकदम मस्त रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर एक और चीज लर्न कर लीजिए मुझसे कि आज आई हैव समथिंग फॉर यू, कुछ जताने का मौका है ना. ये था टीजर. अब हम प्ले करेंगे गाने. सोचो क्या

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
2: रात अकेली है।
3: जोश में रहो।
4: दिल टूट जाए या चार्जर गुम हो जाए, मम्मा सब संभाल लेती है।
5: जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ।
4: This Mother's Day, give her the royal treatment she truly deserves with a majestic Mother's Day celebration, Shahi Maharani. Choose from a lavish lunch buffet or a special a la carte dinner experience on Sunday, 10th May. From tandoori delights to maki dal to kulfi pops and jalebis. All this at just $62 plus plus per adult and $42 plus plus per child. Plus, every mom receives a complimentary jar of gulab jamun or namak pare and a special photo card to capture the memory. Mother's Day Shahi lunch and dinner at Shahi Maharani Raffles City. Limited seats. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions applied.
6: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
7: ये मम्मियाँ कितनी ही ज्यादा क्यूट होती है ना, है ना। और हमें लगता है कि यार ये तो हमेशा बोलती रहती है कि नहीं घर का खाना खाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हाउ मच शी इज स्नैकिंग, बट इट इज व्हेन वी कम आउटसाइड और हमें रोज अपने लिए खुद खाना बनाना पड़ता है तब हमें रियलाइज होता है कि यार मम्मी कैसे सोचती होगी ना रोज रोज हमारे लिए क्या बनाना है, क्या करना है, कैसे करना है। सो वेल, अगर आपने ये बात सुनकर अभी कुछ ऐसा रियलाइज किया कि यार सच्ची में इवन आवर मॉम्स डिजर्व अ रॉयल ट्रीटमेंट, आवर मॉम डिजर्व्स अ ब्रेक फ्रॉम दैट किचन एज वेल, है ना, तो फिर प्लान मैं आपके लिए बना के देती हूँ एकदम शाही स्टाइल। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, 6:48 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक। मैं हूँ अंतरा यहाँ पर आपके साथ एंड यस आई एम टॉकिंग अबाउट शाही महारानी द नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट एंड यू नो द नेम राइट एंड यू नो द फ्लेवर्स एंड यू नो दैट योर मॉम इज गोइंग टू एब्सोल्यूटली लव इट। वाई? बिकॉज भाई 10th ऑफ मे आ रहा है विच इज द मदर्स डे एंड इट्स द परफेक्ट डे टू मेक हर फील स्पेशल कि मामा यू आर द बेस्ट एंड दैट इज वाई आई एम गोइंग टू get you to the best place for this amazing dinner. So just imagine करिए 6:30 बजे से इनका जो है शाही महारानी का मदर्स डे स्पेशल जो डिनर है बिल्कुल आप अपनी मम्मी को लेकर वहां पर पहुंचे हैं एंड यू नो माहौल इतना यू नो शाही है एंड देन आप धीरे धीरे ऑर्डर जब करते हैं तो आप अपनी मम्मी के चेहरे पर चेंज होते हुए एक्सप्रेशन जो है देख सकते हैं, उनकी एक्साइटमेंट देख सकते हैं, उनके अंदर की जो लड़की है ना उसको एकदम ऐसे उछलते कूदते हुए बिल्कुल फील कर सकते हैं कि वाओ यार ऐसा भी हो सकता है एंड यू कैन स्पेंड सम रियली क्वालिटी डिनर डेट विद हर। या फ्रॉम द लाइव चाट स्टेशन टू द कबाब्स एंड द मेन कोर्स एंड एवरीथिंग बट द बेस्ट इज द डिजर्ट। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट मॉम्स एंड डिजर्ट्स एंड दे गो क्रेजी ओवर इट एंड डेफिनेटली द जलेबीज आर अ मस्ट, शाही महारानी मस्ट। सो वेल, एवरीथिंग इज अ मस्ट बिकॉज एवरी सिंगल थिंग एट शाही महारानी जो है वो काफी काफी टेस्टी एंड यमी मिलता है। सो मदर्स डे को और भी खास एंड शाही स्टाइल में अपनी मम्मा के साथ बनाइए, उनको डिनर डेट पे शाही महारानी लेकर जाइए। यस, 6:30 बजे से जो है वो शुरू होगा मॉम्स के लिए जो है यू नो वापस जाते वक्त प्यार भरे नमक पारे भी जो है एज रिटर्न गिफ्ट्स एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड आप फोटो कार्ड भी बिल्कुल वहां पर पा सकते हैं। सो देयर सो मच ऑल ऑफ दिस एंड more only and only for our dear dear moms. But apart from this, what else I have to with me that I will tell you in just a while. But ye yaad rakhiye because 10th mein ab dur nahi hai. Reservation karaye aaj ke aaj hi at Shahi Maharani Raffles City Shopping Center Singapore.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: मेरा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

लेकिन कुछ ऐसा क्यों फील क्यों नहीं आ रही। हाँ तो कुछ ऐसा है कि 7 बजे के उस पार हम लोग जो है बिल्कुल पहुंच चुके हैं, और पहुंचने के बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग बाग यहाँ पे, मतलब आप देखिए फेमस कितने हैं हम, हमारी चाहते कहाँ जो है वो आसमानों को छू रही है। वो ऐसे कि हमारी एक लिसनर, बहुत प्यारी लिसनर है जो बहुत ट्रैवल करती है, ठीक है, वो अभी जो है फ्लाइट में बैठी हुई है और उनकी फ्लाइट जो है अभी निकलने में अभी थोड़ा टाइम है। तो वो जो विमान की यात्री है उनसे पेशेंस रखा ही नहीं जा रहा है। वो कह रही है कि अभी तूने डेविल वेयर्स प्राडा की बात की तो

आई एम गोइंग टू कम बैक एंड लेट्स प्ले समथिंग. या खेलेंगे हम लोग इंटरेस्ट बिकॉज आई हैव समथिंग टू गिव अवे दिस इवनिंग.

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
1: And the Desi girl is now going to talk about Desi Khana. Oh my God. ऐसा हो ही नहीं सकता. Like मेरे जिम्मे ही आते हैं ये सारी चीजें, because you know, जिम्मेदार पर्सन हूँ मैं, जिम्मेदार. Radio Masti 24/7 live मैं हूँ ट्रैप के साथ यहाँ पर. मिडवीक ब्लूज चल रहा है अभी अभी. एक हमारी लिस्नर को अभी टेक ऑफ अब वो कर चुकी हैं, मतलब उनको अच्छे से सेफ ट्रेवल्स बोल के वापस मैं यहाँ पर आ गई हूँ. और मैंने आपसे कहा था दैट आई विल मेक यू विन सम थिंग. अब है कुछ ऐसा कि देसी खाने की बात हो एंड शाही खाने की बात हो तो शाही महारानी का नाम तो आता ही आता है. सो वेल, अब शाही महारानी जो है एवरी सिंगल टाइम. सो अदरवाइज भी अगर आप कभी शाही महारानी पहुंचे राफल सिटी में जो जगह है, देर आर फ्यू थिंग्स. जैसे If I go with Renuka, we definitely order the Pampadi chaat because we both drool on that. Like, unka to favorite hai hi hai. Unke saath mera bhi, mera to har achcha khana is my favorite khana. So, ye to ho gaya wo baat. But if you want to win a Shahi Maharani ka voucher, which you can win from me over here, kya kare? Maine socha ki ek kaam karte hain. Main ek jo hai, डिश का जो कि शाही महारानी में मिलती है, ठीक है, उसका मैं एक डिस्क्रिप्शन देती हूँ, ठीक है, एंड सी इफ यू कैन मेक आउट दैट विच डिश आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक विच फूड आइटम आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, आर यू रेडी फॉर इट? सो वेल, कुछ ऐसा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड सा डिस्क्रिप्शन है इसका. द गोल्डन स्पाइरल ऑफ स्वीटनेस, क्रिस्प सिरप सोक्ड सैफ्रनी and impossible to resist. Ye ek iconic festive delight and it's loved for its crunchy bite and the sugary melt in the mouth magic. Kya hai? And it is a Shahi Maharani special. Ye dono mein se hi to I think aapko jawab mil hi jayega. If I say that it's one of my favorites, then बहुत मुश्किल और confusion हो जाएगा. मुझे खाने की हर चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. So it's a golden spiral of sweetness, crisp syrup soaked and impossible to resist saffrony. This iconic festive delight is loved for its crunchy bite and sugary magic. What is it? Think about it. 9158963 पर जो है वो आप बिल्कुल आप मुझे जवाब भेज दे एंड साथ में भेजे कि why ये सही जवाब एंड why शाही महारानी का ये voucher should be yours. आ जाओ मैदानों में एंड जीत कर ले जाओ. बाय द वे, शाही महारानी का जो है मदर्स डे स्पेशल का जो है लंच बुफे एंड डिनर एज वेल आ रहा है. सो जस्ट इन केस इफ यू हैव मिस्ड आउट ऑन द इन्फॉर्मेशन, जाइए shahimaharani.com, गो गेट योर रिजर्वेशन डन एंड टेक योर मॉम आउट फॉर अ डिनर डेट. टेलिंग यू, जस्ट डोंट वांट टू मिस इट.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
3: गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉन स्टॉप म्यूजिक नॉन स्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
5: चेक इट आउट
6: टेक अ ब्रेक लाफ अ लिटिल And vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
7: खाने के नाम पे तो मतलब इट्स ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि मैं मेरे जैसे सारे लोग मेरे साथ जो है ना ऐसे जुड़े हुए होते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गलत हो किसी व्हेन आई टॉक अबाउट फूड. आई थिंक आई टॉक वे टू पैशनेटली अबाउट फूड. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ मिड वीक ब्लूज बिल्कुल चल रहा है. 7 बजकर हो चुके हैं 20 मिनट. भाई BCCI जो है उन्होंने अनाउंस किया है एक बड़ा ही चेंज फॉर दिस IPL 2026 का फाइनल्स जो है उसका वेन्यू चेंज कर दिया गया है फ्रॉम बेंगलुरु टू अहमदाबाद. ये जो प्लेऑफ्स है विल नाउ बी हेल्ड इन मुलानपुर एंड धर्मशाला एज अ पार्ट ऑफ रिवाइज्ड स्केड्यूल. ऑफिशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है ये डिसीजन वाज टेकन ड्यू टू सर्टेन रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द लोकल एसोसिएशन एंड अथॉरिटीज दैट वर बियॉन्ड BCCI के एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स लीडिंग टू द वेन्यू का रीअसाइनमेंट. सो जो फाइनल्स हैं विल नाउ टेक प्लेस एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में कंटिन्यूइंग इट्स रीसेंट ट्रेंड ऑफ होस्टिंग मेजर क्रिकेटिंग इवेंट्स. मुझे ऐसा लग ही रहा था, पता नहीं कहीं से फील तो आ ही रही थी कि ये ना अब फाइनल्स अहमदाबाद में जो है ना हाल ही में कई सारी जीतों के बाद वहां पर जो है बिल्कुल पहुंच जाएगी. आप कौन सी IPL टीम को बाय द वे सपोर्ट कर रहे हो इस बार? So, I am on the winner. मुझे लग रहा है इस बार पंजाब जीतने वाली है. आई हैव अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट दिस. मतलब इमोशंस अपनी जगह और प्रैक्टिकलिटी जो है जो चल जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है और जिस तरह के मैचेस चल रहे हैं उसका जो है सारा का सारा मुद्दा एक तरफ. तो जो है बहुत जल्द हम आपके लिए ऑन एयर भी IPL के इस तरह के जो है अपडेट्स बिल्कुल लाएंगे. एंड उसी के साथ साथ इफ यू वॉन्ट टू नो मोर इन मच मोर इन डिटेल कि किसने क्या किया, वॉट वर द हाईलाइट्स एंड यू नो वॉट आर द काइंड ऑफ प्रिडिक्शंस एंड एवरीथिंग, देन यू विल हैव टू वॉच द क्रिकेट कॉर्नर जो कि हमारा बड़ा ही एक खास मस्ती में AVI का शो है. हमारे 3 क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं. दे सिट एंड दे काइंड ऑफ ब्रेक डाउन ऑल द मैचेस व्हिच हैज हैपेंड एवरी मंडे एंड फ्राइडे. दे कम 8:30 PM ऑनवर्ड्स. सो इफ यू आर वन ऑफ दोज क्रिकेट फैंस डेफिनेटली यू मस्ट वॉच दैट. एंड आई नो दैट आफ्टर वॉचिंग दैट ऑल्सो यू विल हैव सो मेनी थिंग्स टू से कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा अरे यस दैट बॉल वॉज फैंटास्टिक दैट कैच वॉज फैंटास्टिक. मतलब कभी मैंने कोई मैच देख लिया तो मैं भी इतना रिलेट करने लगती हूँ एंड आई एम लाइक एंड बाकी की उसके अराउंड की भी इतनी सारी गॉसिप्स होती है जो कि आई समटाइम्स टेल दीज गाइज द एक्सपर्ट्स एंड दे आर लाइक क्रिकेट इज मच मोर देन दैट. पैशन देख लो पैशन. सो वेल रिमेंबर क्रिकेट कॉर्नर मंडे And Friday 8:30 PM onwards Masti AVI par. Filhal ke liye Masti ki paachana kholte hain on Radio Masti 24/7 Live.

बाजू ट्रैफिक अपडेट 7:31 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में एंड यहाँ पर ट्रैफिक अपडेट कुछ ऐसा कहता है, व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन CTE टुवर्ड्स SLE आफ्टर मोलमिड रोड, अवॉइड करें लेन बिफोर। व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर ऑन PIE टुवर्ड्स चांगी एट पायलोवर रोड एंट्रेंस, और एक एक्सीडेंट की खबर है एट अंगमुख्यो एवेन्यू 3 टुवर्ड्स अपर थॉम्पसन रोड आफ्टर CTE, सो अवॉइड करें लेन नंबर 1। एंड फिलहाल मेरे यहाँ की लेन जो है सीधा जिस गाने की तरफ जा रही है, इट हैपन्स विद मी एवरी सिंगल थर्सडे। आई एम ऑलरेडी ऑन थर्सडे, व्हाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू जस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हमारा शो, वही वाला जिसके बारे में आप सोच रहे हो, क्योंकि आई हैव 190s वाला गाना लाइंड अप नेक्स्ट फॉर यू ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। लेट्स गो।

Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज़ ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज कर।

It is so funny. It's how at times जो है आप जिनके साथ काम कर रहे हो वो कैसे कोई एक चीज पर रिएक्ट करते हैं उससे कितना ज्यादा डिफरेंस पड़ता है. I'll tell you how. Radio Masti 24/7 live मैं हूँ अंतराब के साथ और यहाँ पर चल रहा है Midweek Blues. हाल ही में एक ब्लू स्क्रीन का ब्लंडर हुआ ठीक है इंडियन टेलीविजन पे एंड इट वॉज अ ह्यूज थिंग. सबने बहुत बहुत लाइक इट वेंट वायरल. सो एकता कपूर का एक सीरियल विच वॉज नागिन 7. I still don't know how it reached the seventh season of it, but then that's not the point. The point is that in one of the scenes, so basically जब भी कोई चीज बनती है तो वो editing table पे जाती है और editing table पे जब जाती है उसके बाद editor जो है वो उसको किस सीक्वेंस में क्या चीज लगेगा वो बिल्कुल उसको प्लेस करते हैं. अब हुआ कुछ ऐसा कि एक जो है सीन से सो इट्स सो मच वीएफएक्स बेस्ड राइट कि वो एक रॉ फुटेज जो है वो ऑन एयर चला गया. लाइक द नागिन स्टैंडिंग विद द ब्लू स्क्रीन अपने नीचे और सामने एंड एवरीथिंग. जहां पे आपको दूसरी चीजें दिखनी चाहिए थी वहां पे आपको रॉ फुटेज थोड़ी थोड़े सेकेंड्स का जो है वो वहां पे गलती से रह गया एंड इट वेंट वायरल विच ऑल्सो मीन्स दैट पीपल आर वॉचिंग इट भाई एकदम ग्लूड होके. तो अब एक बात तो ये हो जाती है कि भाई जो एडिटर साहब है तो वो उनकी नौकरी खतरे में और वो निकाल दिए जाते. बट what Ekta Kapoor did was she made another video and she introduced Vicky ji jo ki editor hai and she said that ki bhai aandhi aa gayi toofan aa gaya directors change ho gaye writers change ho gaye meri zindagi mein sab kuch ho gaya but 20 saal se ek aadmi jo bina thake aur bina uske aur itne passion ke sath kaam kar raha hai wo hai hamare ye Vicky ji jo ki editor hai jo haal hi mein unke ye blue screen wala cheez jo hai kafi viral ho gaya but wo aaj bhi हमारे साथ ही काम करेंगे. आई थिंक हमने इनको बहुत ज्यादा काम दे दिया है जिसकी वजह से जो है एंड शी मेड इट सो लाइक टुक इट लाइटली मेड इट फन एंड शी ऑल्सो सेड कि भाई इंसानों से ही गलती होती है और इट इज ओके एंड मूव ऑन. सो शी हैंडल्ड इट लाइक दैट एंड अब जो लोग हैं वो तो लोग तो मेरे सीरियल्स को लेकर वैसे भी इतनी सारी चीजें बोलते हैं तो मतलब ठीक है यार कभी कभी हमें ना ब्रीदिंग स्पेस दे देनी चाहिए लोगों को. एंड यस ऑब्वियसली किसी ने जब आपके साथ इतना एसोसिएशन जब इतना लंबा होता है एंड यू नो दैट पर्सन्स पैशन टुवर्ड्स इट देन आई थिंक आपको क्या लगता है कि उसने ठीक बिहेव लाइक वाज दिस द करेक्ट थिंग टू डू इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन और शी शुड हैव टेकन सम स्टेप बिकॉज ऐसी जो है एक बार ऐसा हो गया 20 साल में पहली बार. Radio Masti 24/7 Alive पर वो तो आप बताओ कि क्या आप क्या सोचते हो. मैंने अपने वाला बता दिया और फिलहाल गाना क्या सोचता है वो सलमा बताएगी. आज सलमा का मूड हो गया है जो गाना ये कह रहा है और Radio Masti 24/7 Alive. सलमा ध्यान से सुनना.

0: टूट जाए या चार्जर गुम हो जाए, मम्मा सब संभाल लेती है।
1: जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ।
0: This Mother's Day, give her the royal treatment she truly deserves with a majestic Mother's Day celebration, Shahi Maharani. Choose from a lavish lunch buffet or a special a la carte dinner experience on Sunday, 10th May. From tandoori delights to maki dal to kulfi pops and jalebis. All this at just $62 plus plus per adult and $42 plus plus per child. Plus, every mom receives a complimentary jar of gulab jamun or namak pare and a special photo card to capture the memory. Mother's Day Shahi lunch and dinner at Shahi Maharani Raffles City. Limited seats. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions applied.
2: Your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice.
3: The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
4: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
5: Check it out. Josh Mehra.
3: Take a break, laugh a little, and vibe a lot, because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Musti 24/7. Aao, mood change kare.
6: अलग लेवल चैटें चल रही है, अलग लेवल आई टेल यू, मस्ती 24/7 लाइव पर। आंद्रा यहाँ पे आपके साथ बहुत बहुत मस्ती भरा टाइम हमने 5 से 8 का, जब 8 अब बस बजने वाले हैं, हमने ये स्पेंड तो कर लिया है यहाँ पे। अब बात कुछ ऐसी है कि वो जो है ना वो बात कुछ ऐसी है कि अब हमारी मुलाकात होगी कल की डेट में, कल जब हम मस्ती 90s मिक्स टेप लेकर आएंगे और काफी अच्छा जो है समय बिताएंगे। और यहाँ पे जो है लोग मेरे को फोटो भेज रहे हैं जवाओं के फोटो आ रहे हैं, हे भगवान, मतलब क्या क्या चाहते क्या हो आप लोग मेरे साथ। अभी जब मेरे को जिम जाने का टाइम हो रहा है, अब मेरे को शो खत्म करके जब जाना है, लोग मुझे यमी यमी खानों के जो है फोटोज की, हमारा तो ये हो गया, हमारा तो ये हो गया, ये देखो ये वाली फोटो देखो। डीप ब्रेथ ऐसे करते ही मैंने यहाँ से निकल जाना है। सो आज का जो शाही महारानी का वाउचर किसने जीता है, द टीम विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू। अगर आपने जवाब भेज दिया है, वेरी गुड, अगर आपने जवाब नहीं भेजा है तो फिर क्यों नहीं भेजा है। एक छोटा सा सवाल पूछा था शाही महारानी के वाउचर जीतने के लिए, जस्ट इन केस यू मिस्ड, बिफोर गोइंग लेट मी टेल दैट अ गोल्डन स्पाइरल ऑफ स्वीटनेस, क्रिस्प सिरप सोक्ड एंड इम्पॉसिबल टू रेजिस्ट, दिस आइकॉनिक फेस्टिव डिलाइट इज लव्ड फॉर इट्स क्रंची बाइट एंड शुगरी मैजिक, व्हाट इज इट। तो या जवाब भेज के रख देना, क्या पता यू नो नंबर ऐसे ही लग जाए। और अब मुंह में काफी सारा पानी आ गया था, अब मैं जाती हूँ, कल मुलाकात होगी मस्ती मॉर्निंग में, नूपुर को ज्वाइन करिएगा, फिर उसके बाद 11 बजे हम लोग 90s वाली बातें करेंगे। अब मैं जाती हूँ, अब मेरा हो चुका है टाइम, बाय बाय, टेक केयर।

सिंगापुर जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने, तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: हेलो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सिंगापुर आपकी सुबह और दिन को खुशनुमा बनाने के लिए आ गया है आपका दोस्त समर। आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर यादों का कारवा, और आज चलेंगे हम 1973 की फिल्मों के सफर पर। क्या साल था भाई, गॉड, कमाल की सुपरहिट फिल्में आई थी इस साल, और मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन भी इसी साल बने थे। तो चलिए, बहुत मजा आने वाला है आज, कसम से। सबसे पहली फिल्म जिसका मैं जिक्र करूंगा वो है बॉबी, हिंदी सिनेमा इतिहास की मोस्ट रिफ्रेशिंग और यंग लव स्टोरी। बॉबी तो बॉबी थी बस। मेरा नाम जोकर का सपना टूटने के बाद शोमैन राज कपूर को एक इंस्टेंट हिट चाहिए थी, और उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को एज अ हीरो इस फिल्म से लॉन्च किया विद एलिगेंट डिंपल कपाड़िया। अमीर गरीब के बीच की इस प्रेम कहानी में कुछ नया नहीं था, लेकिन इस जोड़ी का जादू, फिल्म का ट्रीटमेंट और सुपरहिट म्यूजिक इस फिल्म को खास बनाता है। ये 1973 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, और हिंदी सिनेमा इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 20 फिल्मों में इसका शुमार होता है। और सिर्फ भारत ही नहीं, सोवियत रूस की भी ये सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से रही है। फिल्म का एक सीन है जिसमें ऋषि कपूर पहली बार डिंपल से मिलते हैं, और वो जैसे ही गेट खोलती हैं तो हाथ में लगा बेसन उनके बालों पर लग जाता है। सेम सिचुएशन राज कपूर नरगिस की पहली मुलाकात में हुई थी रियल लाइफ में, और इसीलिए उन्होंने इसे फिल्म का हिस्सा बनाया। फिल्म का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था, और हम तुम कमरे में बंद हो से लेकर ना मांगू सो ना चांदी, सब कुछ था इसमें कमाल का। लेकिन सबसे बड़ा कमाल था आंखियों को रहने दो आंखियों के आसपास, आए हाय क्या गाना था। हालांकि मैं मान नहीं सकता कि आपने बॉबी देखी नहीं होगी, लेकिन देख भी रखी है

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: वेलकम बैक, मेरा नाम है समर, रेडियो मजी 24/7 लाइव पर लेकर हाजिर हूँ यादों का कारवां। और आज हमारा कारवां गुजर रहा है 1973 के साल से, 1973, कमाल का ये साल। अब जो अगली फिल्म जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है यादों की बारात। हिंदी सिनेमा इतिहास की ये फिल्म परफेक्ट मसाला फिल्म कही जा सकती है। सब कुछ बैलेंस था इसमें। कहानी सलीम जावेद ने लिखी थी। 3 भाई जो बचपन में पिछड़ जाते हैं और फिर एक गाना जो वो बचपन में गाते थे वही गाना उन्हें मिलवाता है। इस बीच रोमांस होता है, एक्शन होता है, ड्रामा होता है, कॉमेडी होती है, सब कुछ होता है। धर्मेंद्र, जीनत अमान, विजय अरोड़ा नए नए आए थे। विजय अरोड़ा को नहीं पहचाने आप? आपने रामानंद सागर वाला रामायण देखा है? उसमें जो मेघनाथ बने थे ना, वो है विजय अरोड़ा। तारिक हुसैन, नासिर हुसैन साहब के बेटे, और अजीत, और अपने आमिर खान भी थे इस फिल्म में भाई। उस समय वो सिर्फ 8 साल के थे। तारिक हुसैन के बचपन का रोल किया था उन्होंने। ये फिल्म उनके चाचा नासिर हुसैन ने बनाई थी और मसाला फिल्मों की ट्रेंड सेटर मानी जाती है ये फिल्म यादों की बारात। इस फिल्म के बाद ही जीनत अमान और नीतू सिंह बड़ी स्टार्स बन गई थी। विजय अरोड़ा वाला रोल अमिताभ बच्चन करने वाले थे पहले, लेकिन उस समय तक वो फ्लॉप हीरो माने जाते थे। सोचिए आप, अमिताभ बच्चन को ये रोल भी नहीं मिला, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मना कर दिया कि भैया ये इस आदमी से मत कराओ। फिर इसी साल जंजीर रिलीज हो गई और बाकी की कहानी आप जानते हैं। वो कहानी भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यादों की बारात फिल्म का म्यूजिक दिया था पंचम दा ने, और चुरा लिया है तुमने जो दिल को से लेकर मेरी सोनी मेरी तमन्ना, और यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। और एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है, आपके कमरे में कोई रहता, आई रियली लव्ड इट। बहुत ही कमाल का, बहुत ही लाइवली गाना है। और जहां तक चुरा लिया है तुमने का सवाल है, तो वो तो आज भी बेस्ट ऑफ रेट्रो माना जाता है। तो चलिए, इतने अच्छे जब गाने हैं इस फिल्म के, तो कंप्यूटर जी से दरख्वास्त है कि एक नहीं 2 गाने तो सुनवाइए। रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर आप हैं समर के साथ, बने रहिए। यादों का ये कारवां गुजर रहा है 1973 से, और ये यादों की बारात से आपके लिए गाने। स्टे कनेक्टेड।

0: सिंह साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

यादों का कारवां लेकर एक बार फिर से हाजिर है समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। वेलकम बैक। आज हम 1973 के साल से गुजर रहे हैं यही चर्चा में। अगली फिल्म जो साल आई थी जो बहुत ही चर्चा में थी वो थी दाग। इस फिल्म ने बॉलीवुड में यशराज फिल्म्स की नींव डाली थी। एक प्रोड्यूसर के तौर पर ये यश चोपड़ा साहब की पहली फिल्म थी। फिल्म के फाइनेंसर थे गुलशन रॉय, जिन्हें लगता था कि फिल्म ज्यादा चलेगी नहीं। फिल्म को काफी लो प्रोफाइल ढंग से रिलीज भी किया गया, लेकिन 6 दिन बाद ही फिल्म के प्रिंट 3 गुना करने पड़े। राजेश खन्ना दो बंगाली हीरोइंस शर्मिला टैगोर और राखी के साथ पहली और शायद आखिरी बार दिखे, शायद नहीं पक्का पक्का आखिरी बार दिखे। इस फिल्म ने राखी और राजेश खन्ना दोनों को जमकर तारीफें दिलवाई। फिल्म तो सुपर हिट थी ही, गाने भी जबरदस्त हिट थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था और अब चाहे मार उठे या बाबा यारा मैंने तो हाँ कर दी और जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, तो बहुत ही कमाल का गाना था। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तुम्हें बता दूं, किशोर दा का ओह वन ऑफ माय फेवरेट। अब जब इतने जबरदस्त गाने किसी फिल्म में हो तो फिल्म तो हिट होनी ही थी। इसकी कहानी, स्क्रीन प्ले, म्यूजिक और परफॉर्मेंस, हर लिहाज से ये एक क्लास फिल्म है। दाग देखने लायक, सुनने लायक। आपको बता दूं कि यश चोपड़ा साहब इससे पहले अपने भाई साहब बीआर चोपड़ा साहब के लिए काम करते थे, लेकिन एक दिन वो पहुंचे और कहा कि उनकी शादी हो गई थी। इस दौरान तक 1973 तक पामेला चोपड़ा से उनकी शादी हुई, तो अब जब एक नई जिम्मेदारी उनके सर पर आई तो उन्हें लगा कि अब उन्हें अलग से कुछ करना चाहिए। अपने भाई साहब के पास पहुंचे, उनसे कहा कि भाई साहब मैं एक अलग प्रोडक्शन कंपनी खोलना चाहता हूं। बीआर चोपड़ा साहब ने उन्हें कुछ भी समझाया नहीं, रोका नहीं, बस इतना कहा याद रखना अब सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, और ये कहकर वो वहां से चले गए। उसके बाद यशराज फिल्म्स की नींव ढल गई और ये फिल्म सामने आई। बहुत ही कमाल की फिल्म है। चलिए फिलहाल तो इस फिल्म के गाने सुन लेते हैं और इसके बाद जब लौटूंगा तो अमिताभ बच्चन साहब की एक फिल्म का जिक्र करूंगा। बहुत ही कमाल की फिल्म थी, बताऊंगा कौन सी है। स्टे कनेक्टेड।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो है ये रेडियो मसी 24/7 लाइव है। इसका नाम और मेरा नाम है समर। शो का नाम है यादों का कारवां। आज हमारा कारवां गुजर रहा है 1973 के साल से 1973 और इसी साल वो फिल्म आई थी जो वन ऑफ माय फेवरेट है, दैट इज अभिमान। अमित जी और जया जी की लव स्टोरी के दौर की ये फिल्म एक तरह से दोनों ने ही प्रोड्यूस की थी। इसका बैनर था अमिया, जिसमें अमीन लिया गया था अमित जी के नाम से और या था जया जी का। बहरहाल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा चली नहीं, लेकिन इस फिल्म को याद रखा जाता है दो वजहों से। पहला, इसका म्यूजिक जो सचिन दा ने तैयार किया था और हमेशा की तरह हर गाना कमाल का था। याद कीजिए, मीत ना मिला रे मन का, तेरी निंदिया रे तेरे मेरे मिलन किए रहना, लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। इस गाने के साथ एक दिलचस्प वाक्य जुड़ा है। ये गाना एक्चुअली मुकेश साहब गाने वाले थे, लेकिन वे कॉन्सर्ट के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। वो जब आते शहर में तब ये गाना गाते, लेकिन अब शूटिंग करनी थी, क्या करें, तो डमी गवाया जाता था पहले, आज भी गवाया जाता है। तो ये डमी गवाया गया मनहर उदास साहब से। मनहर उदास पंकज उदास के भाई हैं और उनसे ये गाना गवा लिया गया। अभी डमी इसलिए गवा लिया करते हैं क्योंकि इस पर कम से कम शूटिंग तो शुरू हो जाए, असली ट्रैक बाद में बनता रहेगा। यही हुआ, जब मुकेश साहब वापस शहर में आए तो उन्हें ये गाना सुनवाया गया कि सर ये गाना है, इसे आपको गाना है। तो उन्होंने ये गाना सुना और कहा कि यार अब मेरी जरूरत है ही कहाँ, इतना अच्छा गाया इस लड़के ने। क्या नाम है इसका? मनहर। बहुत ही अच्छा, कमाल के लोग थे वो, सोचिए आप उस जमाने में। वरना आज तो भैया दूसरे को क्रेडिट लेने नहीं देता कोई, और न्यू कमर को इसीलिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। पहले लोग कितना सपोर्ट करते थे। इस फिल्म को एक्ट्रेस बिंदु की वजह से भी याद किया जाता है। इस फिल्म से पहले तक बिंदु जी वैम्प या कैबरे डांसर के रोल में आती थी। पहली बार उन्होंने एक पॉजिटिव कैरेक्टर किया और ऋषिदा ने इस कैरेक्टर को इतना खूबसूरती से उभारा है कि आप फिल्म देखकर ही इसे महसूस कर सकेंगे। तो देखिएगा अभिमान, फिलहाल तो सुन लीजिए आप अभिमान के एल्बम से ये गाना। रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर आप समर के साथ। जब लौटूंगा तो बच्चन साहब की एक और फिल्म का जिक्र करूंगा, वही फिल्म जिसने साबित कर दिया कि वो एंग्री यंग मैन है। यू गॉट इट राइट, आप समझ गए मैं कौन सी फिल्म का जिक्र कर रहा हूँ। लौटूंगा तो बताऊंगा। स्टे कनेक्टेड।

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: जय

लीजिए लौट आया हूँ मैं अमिताभ बच्चन साहब की एक फिल्म का जिक्र लेकर। मेरा नाम है समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आज यादों का कारवां के जरिए आपको लिए चला हूँ 1973 के साल से। ये फिल्म है जंजीर। इस फिल्म ने सिनेमा के पर्दे का गुलाबी रंग लाल रंग में बदल दिया था। उस दौर के हिंदुस्तान के यूथ के गुस्से को अमित जी ने पर्दे पर कुछ ऐसा जिया कि वो खुद और ये फिल्म एक कहानी बन गई। जंजीर ऑल टाइम ग्रेटेस्ट ट्रेंड सेटर फिल्म है जिसने हिंदी सिनेमा की धारा ही बदल दी। सलीम जावेद ने इस कहानी को लिखा और फिल्म अमित जी से पहले उस दौर के तमाम बड़े स्टार्स को ऑफर की गई थी, लेकिन सबने मना कर दिया था। सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन के लिए कहा। सलीम जावेद ने इस रोल के लिए अमिताभ बच्चन का नाम सजेस्ट किया और ये फिल्म अमित जी को मिल गई। हीरोइन का रोल मुमताज को दिया गया लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया, तो जया जी को रोल मिल गया। दोनों की प्रेम कहानी उस समय परवान पर थी ही। फिल्म रिलीज हुई और विजय, शेर खान, तेजा, रॉबर्ट सब सुपरहिट किरदार बन गए। फिल्म का म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी ने दिया था और उन्होंने दोस्ती को लेकर अब तक का सबसे दमदार गीत रचा इस फिल्म में। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यूं तो जंजीर की राह पर और भी कई फिल्में बनी, बाद में बनती रही, लेकिन जंजीर ने अमित जी को सुपरस्टार बना दिया और इसी के साथ रोमांस के किंग राजेश खन्ना का दौर भी खत्म होने लगा। जब लौटूंगा तो उस फिल्म का जिक्र करूंगा जिसने इस दौर को खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। स्टे कनेक्टेड।

0: तुम आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: सुनिए यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: वेलकम बैक, समर है मेरा नाम। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आपको एंटरटेन करना है मेरा काम, और ये मैं कैसे करता हूँ, यादों का कारवा के जरिए। जी, ये मेरे शो का नाम है, आपको लिए चलता हूँ बीते साल के गुजरे जमाने के बेहतरीन फिल्मों के उस दौर में, जब वो कमाल का म्यूजिक हुआ करता था, जबरदस्त फिल्में होती थी, जो आज भी हमारे साथ हैं अपनी कहानियों के साथ, अपने किस्सों के साथ। बस वही लेकर हाजिर हो गया हूँ। इस बार मैं बात कर रहा हूँ नमक हराम की। जी, 1973 का जिक्र चल रहा है, तो नमक हराम भी इसी साल आई थी। ऋषिकेश मुखर्जी की एक और सुपरहिट और कंटेम्प्रेरी फिल्म थी ये। ये फिल्म उस दौर में बढ़ते ट्रेड यूनियन मूवमेंट और मुंबई की कपड़ा मिलों के बैकड्रॉप पर बनाई गई थी। कहानी एक अंग्रेजी फिल्म बैकेट पर आधारित थी, जो 1960 में रिलीज हुई थी। ऋषिदा ने इसे भारतीय परिवेश में फिल्माया। आनंद के बाद ये दूसरी फिल्म थी जिसमें ऋषिदा ने अमिताभ बच्चन साहब और काका को साथ लिया, और इन तीनों की ये एक साथ आखिरी फिल्म भी थी। फिल्म सुपरहिट रही, कहानी के लिहाज से भी और म्यूजिक के लिहाज से भी। पंचम ने नदिया से दरिया, दरिया से सागर और मैं शायर बदनाम, दिए जलते हैं फूल खिलते हैं जैसे गाने इस फिल्म के लिए बनाए थे, और किशोर दा ने क्या जमकर इन्हें गाया है कि आज भी इन गानों की तासीर बनी हुई है। अमित जी और काका के रिश्तों में कड़वाहट का दौर इसी फिल्म से शुरू हो गया था। बताते हैं कि फिल्म के अंत में वैसे तो अमित जी के कैरेक्टर को मरना था, लेकिन काका ने एंड बदलवा दिया और लोगों की सिंपैथी खुद ले गए। बहरहाल, बड़े सितारों की बड़ी बातें भाई, आप तो फिल्म और इसके गानों का मजा लीजिए। यही वो फिल्म थी जिसके बाद अमिताभ बच्चन साहब का दौर शुरू हो गया और राजेश खन्ना साहब का सूरज अस्त होने लगा था। तो चलिए, फिलहाल तो ये गाने बड़े मस्त हैं, ये सुन लेते हैं आप। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर रहिए मेरे साथ, मेरा नाम है समर, लौटूंगा एक और फिल्म का जिक्र लेकर। स्टे कनेक्टेड।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

1973 का साल है चर्चा में। आप रेडियो मसी 24/7 लाइव पर सुन रहे हैं यादों का कारवां मेरे यानी समर के साथ। वेलकम बैक। अगली फिल्म जो इस साल आई थी जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा वो थी हंसते जख्म। चेतन आनंद की ये उन फिल्मों में से है जो अपने नरेशन और म्यूजिक के लिए याद की जाती है। फिल्म में नवीन निश्चल हीरो थे और चेतन आनंद की फिल्मों की परमानेंट एक्ट्रेस प्रिया राजवंश उनकी हीरोइन थी। एक्चुअली ये उनकी पार्टनर भी थी। साथ में थे बलराज सहनी और नादिरा। एक डिफरेंट स्टोरी विद डिफरेंट ट्रीटमेंट। फिल्म का म्यूजिक मदन मोहन साहब ने दिया था और सारे गाने साहब उस दौर में भी सुपरहिट थे और आज भी कमाल के सुपरहिट हैं, लाइवली हैं, जबरदस्त है। तुम जो मिल गए हो, ये तो गाना कमाल ही है। इस गाने का तो पिक्चराइजेशन ऐसा है कि बारिश के मौसम के लिए से परफेक्ट सॉन्ग माना जाता है। बाकी लता जी की आवाज में बेताब दिल की तमन्ना यही है, ओहो क्या गाना है। और आज सोचा तो आंख भर आई, ये इसी फिल्म का गाना है भाई साहब, इनका कोई मुकाबला नहीं है साहब। फिल्म भी देखी जा सकती है और म्यूजिक तो आपके कलेक्शन का हिस्सा होना ही चाहिए, क्योंकि एक और गाना है जिसका जिक्र मैंने नहीं किया,

ये है भैया, वो इसलिए है क्योंकि आप रेडियो में से 24/7 लाइव सुन रहे हैं। यहाँ पर मजा ही मजा है, मस्ती ही मस्ती है, सुनते रहिए। मेरा नाम है समर, मिलता हूँ आपसे इन गानों के उधर। स्टे कनेक्टेड।

आ गए आप, मैं आपसे पहले पहुंच चुका हूँ। मेरा नाम है समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां चल रहा है और आज 1973 यानी 1973 की फिल्मों का जिक्र हो रहा है। अगली फिल्म थी ब्लैकमेल, मतलब उस जमाने की जो बेस्ट फिल्में थी उनमें से अगली फिल्म जो है वो थी ब्लैकमेल, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ आज। 70 के दशक के टॉप फिल्म मेकर्स में से एक थे विजय आनंद और उनकी ये फिल्म ब्लैकमेल उनके अंडररेटेड कामों में गिनी जाती है। धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी जैसे एक्टर्स के साथ विजय आनंद ने एक अलग ही रस्म की लव स्टोरी बनाई थी जो एक साइंस फिक्शन से होती हुई रोमांस और अंत में थ्रिलर बन जाती है। फिल्म का म्यूजिक दिया था कल्याण जानन जी ने, जो जॉनी मेरा नाम के बाद एक बार फिर से गोल्डी से यानी कि विजय आनंद साहब से जुड़े थे और इस जोड़ी ने पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती, कितना खूबसूरत गाना ये दिया था, और मिले मिले दो बदन ये लास्ट में आता गाना क्लाइमेक्स पर, बहुत ही कमाल का गाना ये, कम सुना होगा आपने लेकिन बहुत ही जबरदस्त गाना ये। ये गाने इसी फिल्म का हिस्सा थे। पल पल दिल के पास तो एवरग्रीन सॉन्ग है, ऐसे हिंदी सिनेमा का सबसे अच्छे ढंग से पिक्चराइज्ड लव सॉन्ग कहा जाता है। बहरहाल धर्मेंद्र और शत्रु साहब को उनके एक्शन पैक्ड रोल्स से कुछ अलग ढंग के रोल में देखना है तो ब्लैकमेल देखिएगा आप, दोनों के दीवाने हो जाएंगे आप, ये तय बात है। तो चलिए जब मौका मिलेगा तब आप ये फिल्म देखेंगे, मुझे तो मौका मिला है, मैं आपको इस फिल्म के गाने जरूर सुनवाऊंगा। आप सुनते रहिए यादों का कारवां समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

वेलकम बैक सिंगापुर। कैसा चल रहा है आपका ये खूबसूरत कारवां? आप हमें कभी बताइए तो सही हमारे फेसबुक पेज बनाकर। मेरा नाम है समर और आज 1973 के इस बेहद खूबसूरत साल से इस कारवां को आपके साथ गुजार रहा हूँ। अगली फिल्म थी जो इस साल आई और जो बड़ी कामयाब रही, बड़ी मकबूल रही, अनामिका उसका नाम था। संजीव कुमार, जया भादुड़ी की ये सस्पेंस थ्रिलर थी। स्टार आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन ने ये फिल्म बनाई थी। फिल्म का प्लॉट बहुत ही इंटरेस्टिंग था और जया भादुड़ी जैसी एक्ट्रेस को बाहों में चले आओ जैसा सेंसुअस सॉन्ग करते देखना भी काफी इंटरेस्टिंग है। बहरहाल फिल्म अच्छी चली और खूब जला पंचम का म्यूजिक भी, जो आज भी सुपरहिट है। तेरी भीगी भीगी सी पलकों में रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के। बाहों में चले आओ, वन ऑफ द बेस्ट कंपोज्ड सेंसुअस हिट्स ऑफ पंचम संग बाय लता जी। आज की रात कोई आने को है रे बाबा रे बाबा रे बाबा, ये भी इसी फिल्म का गाना था। कहानी में कई ट्विस्ट है और ये फिल्म देखकर ही मजा आता है और इसे संजीव कुमार जया भादुड़ी की सबसे अच्छी फिल्म भी कहा जाता है। हालांकि मेरे हिसाब से कोशिश उनकी ज्यादा बेहतर फिल्म थी, लेकिन कमर्शियल सिनेमा की अगर बात करें तो ये फिल्म ज्यादा बढ़िया है। बाहों में चले आओ को लता जी अपने सबसे अच्छे गानों में मानती हैं और अपने लाइव शो में इसे जरूर गाती थी उस जमाने में। आप सुनेंगे इस गाने को तो कंप्यूटर जी बाहों में चले आओ, नहीं नहीं वहीं रहिए वहीं रहिए, बाहों में चले आओ गाना लगा दीजिए। आप तो चलते ही आ रहे हैं, चढ़े ही जा रहे हैं। आप सुनिए सिंगापुर और एक और फिल्म का जिक्र करूंगा लौट कर। स्टे कनेक्टेड।

एंड वाइल यू आर रिलिशिंग ऑल दीज अमेजिंग अमेजिंग गानास जो समर जी यहाँ पर आपके लिए प्ले कर रहे हैं, व्हाई एम आई हियर? आई एम हियर टू टेल यू कुछ खास बात आम के बारे में. जी हाँ, बिल्कुल. जब ये सीजन आता है आम का, तो दिल में बहुत सारे इमोशंस आते हैं, घर की याद आती है. बट नहीं, नॉट एनी मोर सिंगापुर, बिकॉज GGMartOnline.com आर हियर विद अस सैटिस्फाइंग हमारी आम वाली क्रेविंग. दैट इज करेक्ट भाई. योर फेवरेट मैंगोज फ्रॉम इंडिया, स्ट्रेट फ्रॉम देयर फार्म, केमिकल फ्री, एब्सोल्यूटली ऑर्गेनिक. GGMartOnline.com पर जाकर आप बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं. अल्फांसो जो मैंगोज हैं, दे आर डायरेक्टली सोर्स फ्रॉम देवगढ़ एंड रत्नागिरी, एंड दे आर नाउ अवेलेबल एट GGMartOnline.com. भाई फ्री डिलीवरी जो है, ऑर्डर्स अबव $76 वो तो है ही है, बट लिमिटेड सीजन है, अनलिमिटेड क्रेविंग है, तो जल्दी से लॉग ऑन करें, आज के आज ही रजिस्टर करें. एंड सभी जितने भी मस्ती फैमिली हैं, इफ यू आर ट्यून्ड इन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू नो व्हाट, यू कैन गेट दैट 10% ऑफ. जी हाँ, बस कोड यूज करें new10 NEW10, एंड बिल्कुल वो 10% का ऑफ ले और आम ऑर्डर करें आज के आज ही GGMartOnline.com. दैट्स वेयर यू गॉट गो. And right now, I gotta go so that aapke Samar ji can be back and you continue listening to Radio Masti 24/7 Live.

में बुला रहे थे, अब कह रहे हो हाँ गले लग जाए। वेलकम बैक सिंगापुर, मैं तो चाहता हूँ कि आप आके गले लग जाएं। लेकिन ये मेरी अगली फिल्म का नाम है जिसका जिक्र मैं करने वाला हूँ। यादों का कारवां में आप हैं समर के साथ और रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। आज यादों का कारवां गुजर रहा है 1973 के साल से। हाँ गले लग जाए हमारी अगली फिल्म, मसाला फिल्म थी ये। और मसाला फिल्म मेकर कौन? मनमोहन देसाई, उनकी एक सुपरहिट फिल्म है ये जिसमें ऋषि कपूर, उनकी एक सुपरहिट फिल्म है ये जिसमें शशि कपूर, शर्मिला टैगोर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे सितारे थे। याददाश्त खोने का फॉर्मूला इस फिल्म में भी था और वैसे ये उस दौरान खूब चल रहा था, कई फिल्मों में ये देखने को मिल रहा था। फिल्म की राइटर मनमोहन देसाई की पत्नी जीवन प्रभा देसाई ही थी। ये फिल्म यहाँ तो चली ही लेकिन अफ्रीकी देश अल्जीरिया में भी ये फिल्म 40 साल से बेहद पसंद की जा रही है। आज भी वहां के लोग इस फिल्म के दीवाने हैं। फिल्म का म्यूजिक एक बार फिर पंचम का है और गाने याद कीजिए आप। याद नहीं आ रहे आपको, मैं बताता हूँ। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, गला थोड़ा मेरा खराब है, बाकी गाना बहुत ही बढ़िया है। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, ये भी इसी फिल्म का गाना था। न कोई दिल में समाया, ये भी इसी फिल्म का गाना था। तो पंचम की धुनों का जादू एक बार फिर से लोगों के सिर चढ़ा और फिल्म हो गई सुपरहिट। तो आ गले लग जा से आ रहे हैं आपके लिए ये गाने और मैं आपसे अब विदा लूंगा। इजाजत दीजिए, अगली मुलाकात तक मेरा इंतजार कीजिएगा। और जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि अपना ख्याल रखेगा, अपने अपनों का ख्याल रखेगा, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखेगा। मोहब्बत बनके किसी के दिल में बस जाइएगा और मुस्कान बनके किसी के चेहरे पर सज जाइएगा। और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर। तब तक के लिए बाय, नमस्कार एंड टेक केयर।

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हाँ यार सौदा सौदा
1: ओहो
3: दोनों डील करा सील।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
4: रात अकेली है
5: तो क्या हम तो आपके

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आप

0: नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना,
1: रात अकेली है जोश में रहो।
2: Go home. I experienced that too. I

ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

0: जादू है नशा है
1: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
2: रात।

0: शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: You know what, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर का AI टूल ना बाकी दुनिया के AI टूल से सबसे ज्यादा हाई फाई है। सो हेलो हाय, मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर वंस अगेन आपसे मुलाकात करने के लिए आ चुकी है। You know what, दुनिया में अलग अलग तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इंट्रोडक्शन तो हो गया है, उसको हम इस्तेमाल भी करने लगे हैं, हम प्रीमियम वर्जन पर भी स्विच होते जा रहे हैं, लेकिन बाय द टाइम जो हमारे अंदर का AI है, यानी वो होता है ना इंट्यूशन पार, या फिर किसी चीज को देख कर ही उसका पूरा ऑब्जर्वेशन लगा देना, बिना किसी के सवाल जवाब किए आप सब कुछ सच सच बोल जाते हैं, तो ये भी तो हमारे अंदर एक AI टूल है जो हमें ये सारी चीजें कैलकुलेट करने का मौका देता है, राइट? सो मैं आज जब घर से निकल रही थी तो मेरे अंदर का इंट्यूशन ये बार बार कह रहा था कि नुपुर आने वाला वीकेंड बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। एंड यू वोंट बिलीव, जब से मैं यहाँ ऑफिस आई हूँ पिछले एक घंटे में, मुझे कितने सारे लोगों ने वीकेंड प्लान्स के लिए पता है इनवाइट किया है। सोचो, ये जो मेरी इंट्यूशन पावर है मेरे अंदर जो है बाय डिफॉल्ट, ये कोई AI टूल से कम है क्या? ना ना ना ना ना। चलो ठीक है, बाय द वे आपके अंदर का जो AI टूल यानी कि आपका खुद का इंट्यूशन पावर जो ये कह रहा है ना कि नुपुर आई है तो बढ़िया वाले गाने लगाएगी, तो डेफिनेटली इसको मैं साकार करने वाली हूँ। चलिए बिना देरी के एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
0: You know what? गांव अभी बसा नहीं है लेकिन लुटेरे जो है ना वो आ चुके हैं और इन लुटेरों की वजह से गांव का नुकसान होता जा रहा है। So hello, hi, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ जुड़ी हुई है एंड डेफिनेटली गांव लुटेरे फिल्मी बातें ये सब कॉम्बिनेशन में आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप मेरी बात की गहराई को समझे। देखिए इस नवम्बर के महीने में स्पेशली अगर मैं 8 नवम्बर की बात करूँ तो इस दिवाली रामायण मूवी जो है उसे रिलीज किया जा रहा है। डेफिनेटली रणबीर कपूर एंड साई पल्लवी राम जी एंड सीता जी के किरदार में आपको नजर आने वाले हैं और इसका टीजर जो है वो आया भी थोड़ा सा प्रॉमिसिंग भी लगा लेकिन बहुत ज्यादा ट्रोलिंग लगा। लेकिन यू नो व्हाट, इस मूवी में जो रावण का किरदार निभा रहे हैं मतलब जो विलन बने हैं वो है अपने साउथ की सुपरस्टार दैट इज यश। एंड यश का कहना यह है कि आप पार्ट वन जब देखेंगे तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसका पार्ट टू जो है ना वो और भी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है और भी ज्यादा इंसाइटफुल होने वाला है। और वो कहते हैं ना कि पूरी रामायण की जो इनर साइकोलॉजी है इन लोगों ने किरदारों ने घोट के पी ली है, दैट्स व्हाई ये आपको बहुत ज्यादा बढ़िया बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले हैं। देखो कहने वाले तो कह देते हैं, अब करने वाले की जब बात आती है या दिखाने वाले की जब बात आती है थिएटर्स में जब हम पहुंचते हैं तो हमारे जितने डॉलर्स लगे हैं उसका 10 गुना डॉलर वसूल नहीं होता ना तब तक मजा नहीं आता। सही कहा ना। चलिए मस्ती मॉर्निंग शो पर मैं आज थोड़ी सी देर में बताने वाली है अक्रॉस द आइलैंड आप किन बातों का और फायदा उठा सकते हैं।

0: टक। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
1: समर्स में इंडिया से आए हुए रसीले आम का मजा अगर हमने भरपूर नहीं लिया और किसी ने हमसे ज्यादा ले लिया तो बुरा तो लग सकता है। सो प्रैक्टिकली ये चीजें ना पॉसिबल है, बिल्कुल है। सो ये लड़ाई शुरू होने से पहले आप भी अपने घर पे ये मंगवा लो जो मैं बता रही हूँ। हेलो हाय, मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। अब देखो, इंडिया से आने वाले मेहमान जब आएंगे तब आएंगे, जैसे तैसे आएंगे, और जब वो आएंगे उनसे कुछ मंगवा लो तो उनका मुंह बन जाता है, राइट? लेकिन जब आप हक से ggmartonline.com पर जाकर सीजनल मैंगोज, वो चाहे देवगढ़ के अल्फांसो हो या रत्नागिरी के अल्फांसो हो, जिनका प्राइसिंग 39 सिंगापुर डॉलर पर बॉक्स या फिर 35 सिंगापुर डॉलर पर बॉक्स के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है, आप जब तक ये ऑर्डर नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, राइट? अगर आपने इन्हें ऑर्डर किया तो फ्रेशली ये जो मैंगोज है वो आपके घर तक पहुंच जाएंगे। आपको 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है। उसके लिए आपको बस कोड यूज करना है, दैट इज new10। उसके बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस जब आप ggmartonline.com के प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको कह सकते हैं सुई से लेकर पहाड़ तक ग्रोसरी का मिलने वाला है। तो डेफिनेटली अगर आप 70 सिंगापुर डॉलर के अबव की डिलीवरी करवाएंगे तो डिलीवरी एब्सोल्युटली फ्री है। तो डिटेल के लिए पहुंचिए ggmartonline.com या कॉल कर सकते हैं 808-565-77 पर। इवन जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएं अपना फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप कर दें 9151-8963 पर। क्या पता हमारी तरफ से भी बेहतरीन डील्स आपको मिल जाए। आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा केजी मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी,
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
2: क्या
3: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
2: वाजी, क्या बात जी।
3: Order today from GG Mart, your personal grocer.

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space. Dear मस्ती, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर।
0: वो कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अक्कल की जरूरत होती है। एंड यू नो व्हाट, जो लोग नकल बार बार करते हैं ना, उनके जितना आईक्यू लेवल किसी का हो ही नहीं सकता, बिकॉज दे नो द लूप होल्स और उनका इस्तेमाल कैसे करना है, इसको एक आर्ट कहा जाता है। सो हेलो, हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने बहुत सारी मूवीज देखी हैं जिनके हमने बहुत सारे पार्ट्स भी देखे हैं। एंड स्पेशली हमारे संग चोट जब हो जाती है, जब मूवी फर्स्ट पार्ट में तो बहुत प्रॉमिसिंग बन जाती है, लेकिन सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट आते आते ना वो सिर्फ हमारा पैसा लेकर जाती है, डॉलर लेकर जाती है, लेकिन हमें बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करती। एनीवेज, एक उम्मीद करी जा रही थी या जा रही है हेरा फेरी मूवी से कि जब इसका और पार्ट आएगा, मतलब तीसरा पार्ट आएगा, दो पार्ट तो आ चुके हैं राइट, जब इसका तीसरा पार्ट आएगा तो ये हमें और भी ज़्यादा इन्जॉयबल लगेगा। लेकिन यू नो व्हाट, धीरे धीरे से इसके नाम से जुड़े हुए कॉपीराइट्स, इस मूवी से जुड़े हुए कॉपीराइट्स निकल कर आ रहे हैं कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फिल्म मेकर्स ने इसके राइट्स खरीदे हुए हैं। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है इसका पता नहीं लग रहा है, और जब तक इन बातों का पता नहीं चलेगा तब तक हेरा फेरी मूवी का और ज्यादा पार्ट, अगला पार्ट आने में टाइम लगेगा। तो हाँ, ये जो हमारा सपना है कि सुनील शेट्टी, परेश रावल या फिर अक्षय कुमार एक साथ दिखाई दे, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान। दूर से लेकर पास वाली बातें डेफिनेटली आपको मिल रही है यहीं पर, कहां पर, यानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। डोंट गो एनीवेयर।